हमारी सेवा करते हैं, हम तो केवल नाम मात्र के दास हैं, वही हमारा भरण पोषण अंतर और बाहर से वही करते हैं। सखी श्री जी से जागीर की ऐसा प्रेमी हमने नहीं देखा। वो मानसरोवर के कुंजों में बैठ करके बिना हाथ में लेकर के अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा ऐसा मंत्र रट, ये परा मंत्र है, परा विद्या, इसीलिए आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये परा विद्या है राधा नाम। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ये दुर्लभ नाम है। ये कृष्ण की आंतरिक हृदय वृत्ति में विराजमान ये राधा नाम है। श्री जी से कहने लाडली जू, वहां के जितने भी जीव जंतु हैं, खगमृग पशु पंछी, राधा नाम सुनकर सब मोहित हो रहे हैं और एकटक चकोर की भांति उसके मुख चंद्र की तरफ देख रहे। वो अशुभ प्रवाह करती हुई राधा राधा राधा राधा ऐसा वीणा वादन करते हुए गान कर रही। लाडली जू, मान सरोवर मांझ अरी सुनि नहाई के, राधा को जाप जपे पानी में जाई के। और हमने देखा किसके बाद वो मानसरोवर में स्नान किया और इतना हृदय तक छाती तक जल में खड़े होकर राधा राधा राधा ऐसा जप कर रहे हैं, अर्थात राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का जप कर रहे हैं। फिर लाडली जो हमने देखा कि वो आपकी स्वर्ण श्री विग्रह की प्रतिमा

जो हमारी स्वामी जी की कैसे प्राप्ति होती है। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुवार स्वयं लाल जी महाराज और गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम श्री लाल जी का राधा आराधन तत्पर प्रतिपल किशोरी जी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधन तत्पर तत्पर है श्री स्वामी जी की आज कैसे कोई जानेगा राधा तत्व, जिन श्री कृष्ण तत्व को वेद भी नेति नेति कहते हैं वो राधा तत्व का क्या वर्णन कर पाएंगे। लाल जी के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी महाराज, प्रेम अनिर्वचनीय है कोई नहीं वर्णन कर सकता। फिर सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का कोई वर्णन कैसे करे। सखियां जो आचार्य रूप से होते तो वो भी कह रही, जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटि को पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। लाडली जू वो आपकी स्वर्ण प्रतिमा को स्वर्ण श्री विग्रह को स्नान करा रही है और चरणोदक लेकर पान करके अपने माथे पे चरणोदक और हृदय से उस प्रतिमा को लगाकर ध्यानस्थ हो जाती है।

पानी के। हे लाडली जी, वो आपकी प्रतिमा का श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर केसर, चंदन, कर्पूर, इस मिलित चंदन से पत्रावली की रचना उस स्वर्ण प्रतिमा में करते हैं, सुंदर पोशाक धारण कराते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल पवाते हैं, फिर आचमन करा करके मुख पोछकर पान की बीड़ी और फिर आपके चरणारविंद में प्रणाम करके प्रसाद पाते हैं जो भोग लगाया।

आरती, वो धूप आरती करती है, अपने प्राणों को बलिहार करके आपकी आरती उतारती है। कुंजन में गुहि फूल निकुंज बना वही ललनातों को नित ही नित लाड़ लड़ा वही। स्वामी जी सुंदर सुंदर

फूलों को चयन करके शैया की रचना कर निकुंज में फूल बंगला बनाते हैं और आपकी प्रतिमा को विराजमान करके सुंदर सुंदर पद गान करते हैं, आपको रिझा रहे हैं। यह है उपासना महारानी जी को प्रसन्न करने की। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, वो बड़ी जानकार है। ऐसे सुंदर सुंदर रागों का गान करके प्राण मोहित हो रहे हैं उनकी गान। समस्त आचार्यों के आचार्य हैं लालजी महाराज, जगत गुरु है, नृत्य गान वाद्याद सबके आचार्य हैं, यही इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, और लाडली जू एक छोटी सी प्रतिमा और आपका नाम कंठी में पहने हमने उनको देखा। तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में पोही के, तुलसी की कंठी और उसमें आपका राधा नाम और आपका रूप दोनों विराजमान किए हुए हैं। कंठ सुघर संगीत सबे स्वर गावही, राग रागिनियां तो मानो मूर्तिमान होकर उनके कंठ में विराजमान हो ऐसे गान कर। और एक आश्चर्य की बात, वो अपने अधरों पे मुरली रख के वैसे ही बजाती जैसे लालजू बजा रहे। मुरली धर जो मुरिके मुरली जो बजावही, बंशी इतनी प्रेम मई है कि लालजू जब अधरों में धरते हैं तो उसका वजन नहीं सह पाते, ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, कमर भी टेढ़ी हो जाती, ललित त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। रसमयी वंशी का भार अधरों पे पड़ा तो महाराज ललित त्रिभंगी वो रूप और कहीं नहीं मिलेगा। ये वृंदावन का रूप है, कहीं नहीं मिलेगा, द्वारिका में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा, विग्रह विराजमान उन्हीं के सब है। लेकिन ये रूप यहां बंशी, ये है बंशी का क्षेत्र वृंदावन, सुदर्शन का द्वारिका मथुरा में, वहां भी देखा गया हूं। यहां कभी सुदर्शन जी का प्रवेश नहीं, कभी ब्रज 84 कोष में कौमोद की गदा पांचजन्य शंख भगवान की दिव्य पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, यहां तो कर कमल में श्री मुरली जी विराजमान है। लाडली जो जब वो मुरली में राधा नाम गाते हैं तो जमुना गमुना ना करे, वह प्रवाह बढ़ा वही मृगवाहन चाहन चित्र बंधे धुनि भावई, ऐसा बंशी का नाद कि यमुना का प्रवाह बंद हो गया। यमुना गमना ना करे, यमुना जी का प्रवाह बंद हो गया, मृगवाहन चंद्रमा भी चलना रुक गया, थकित हो गया, चंद गति मंद भई निरख छवि कान हो।

वही लाडली जू, बिल्कुल जैसे नंद नंदन बंसी बजाते हुए वो सखी वैसे ही बंसी बजा रही। उनकी बंसी ध्वनि सुनकर वर मोर चकोर किशोर मरालन मंडली, कहीं मोर मंडली कहीं है हंस मंडली, सुख सारिका को ये पक्षियों के झुंड के झुंड उनको आसपास घेरे हुए, मानो मुनि व्रत धरे कपोती कोकिला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परम हंस विराजमान हो, ऐसे चकोर की भांति देखते हुए सब पक्षियों की मंडली विराजमान, और वो अपने अधरों में बंशी बजा रहे। हमें तो देख के ठीक ऐसा अनुमान होता है जैसे नंद नंदन ही हो, वैसे किशोर उन्हार श्री नंद किशोर की, क्योंकि अखियां बड़ी सुख देनी पैनी कोर की, बिल्कुल नंद नंदन जैसी आंखें हैं वैसे ही उनकी चलन चितवन, वैसे ही बंसी और वैसा ही प्रेम। हमारी प्रार्थना है कि आप चल के खुद देख लो कैसी वो आपकी आराधना करती, समझ पाए। सखी श्री जी को प्रेरित करती, पधारो लाडली जी, वो आपके, वो हमारा परिचय, हमको लाडली जू का परिचय, हमारा लाडली जू को परिचय, ये काम ये गुरुदेव रूपी सहचरी आचार्य रूपी सहचरी करती। श्री जी से हमारी स्मृति, वो एक है आपका, उनको हमारी तरफ आकर और हमारे चित्त को लाडली जू की तरफ, इसीलिए रेमन रसकन संगविन रंचना उपजे, कहो कृपा उपजे कई भांति बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। श्री जी से कहा कि हमारी प्रार्थना है आप चल के खुद देख लीजिए।

कीजिए। अगर आप चलेंगी ना तो उसे बहुत नेत्रों में सुख मिलेगा, क्योंकि आपको प्रतिमा के यहां जब आपको साक्षात देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आपको भी सुख मिलेगा क्योंकि वो आपके विशेष प्रेम में मत वाली है। जब आप देखोगी तो आपको सुख मिलेगा, और जब आपको वो देखेगी तो उनको सुख मिलेगा। चलो प्रिया जी, बड़ी कोमल चित लाडली जी, बहुत लाडली जी, लाडली जी, बस कोई है ही नहीं, कोई नहीं, प्रभु भी नहीं आप। इसीलिए तो पता नहीं कौन सा तत्व से किशोरी जो है, किसी के परिचय का नहीं है। आज तक लाल जो परिचय नहीं जान पाए हमारे, आप ऋषि मुनियों की तो बात जाने, दुआ दिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, तैसो भ्रम होत देखियो न कबहूरी। आज तक पहचान नहीं हो पाई, कैसे कोई जानेगा इस महा युगल सरकार प्रेमी को, की आज तक पहचान नहीं हो पाई प्रिया प्रीतम में। आज तक दुआ दिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। प्रतिपल ये नए प्रेमी है, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, इनको नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम ब्रशुभान किशोर। प्रतिपल नवीन नव किशोर, श्री जी इतनी कोमल चित्त है, बस उसी कोमल चित्त की वृत्ति को गुरु कृपा से समझ के ऐसे कहे, भगवत प्राप्ति तुम अगर करोड़ों बार होनी होती तो भी सस्ती थी यार, हमारी महारानी जी के दरबार से सुनो तो भगवत प्राप्ति तुम्हारे घर की जेब की बात है। ये केवल महारानी जी के ही बल पर है, किसी साधन बल पर ऐसा नहीं। अगर साधन बल पर सुनना है तो भगवान विश्वनाथ जी के रंग में रंगे हुए वेदांत दर्शन से सुनो तो कांप जाओगे कि क्या किसे कहते हैं मोक्ष, किसे कहते हैं अखंडानंद, कांप जाओगे भैया हम नहीं चल पाएंगे। और यहाँ यहाँ ऐसे लगे चलने की बात की, हम तो दौड़ के चले जाएंगे श्री जी के पास पक्का, क्योंकि जैसे हरिवंश परम कोमल चित, परम कोमल, जेव ही ये कहा उस श्री जी को क्या हुआ, रोमांच हो गया, कोई हमें इतना प्यार करता है, राधा राधा बोल, श्री जी के अश्रु चल गए श्री जी के, कैसे तुम्हें बताए कितना हो, अरे प्रेम मूर्ति है लाड, कोई राधा राधा बोल रहा है, कोई हमारी प्रतिमा की सेवा कर रहा है। ये जो आप लोग भोग लगाते हैं, नाचते हैं, आरती करते हैं, निहाल हो गए महारानी जी के सामने, मैं किसी और की नहीं सुनना है, श्री जी देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। बात सुने रोमांच किशोरी के भयो, इतनी प्रेम विवशता हुई कि पास में खड़ी सखियों ने संभाल लिया, गले का हार जैसे ऐसे सब सखियां प्यारी जी को बहुत प्यार करती, सखियां प्यारी जी बहुत, पलकन को जैसे अधिक पुतरिन सोमति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभाल, अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार। ये वृंदावन है, ये वृंदावन का प्रेम है, सखियों ने संभाला, किस बात में, कोई राधा राधा कह रहा है, कोई हमारी प्रतिमा का पूजन कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, श्री जी कैसे, श्री जी

जन प्यारी जू के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं, जैसे मानो मोतियों की वर्षा हो। कोई राधा नाम ले रहा मेरे को पुकार रहा है, परम कोमल चित लाड़ी परम। मदन टेर के बाबा का जो चरित्र आता है तो उन्होंने तो यही कहा ना कि लाडली लाल के संग में आप भी कठोर हो, वो तो ऐसे ही बोल रहे थे। इतने वर्ष हो गए वृंदावन वास करते, आंखों से अंधा हो, पूरा जीवन हो गया आपके चरणों में, आज तक आपको करुणा नहीं आई, मुझ दीन पर दया नहीं आई, आपके दरवाजे में पड़ा राधा राधा पुकार रहा हूं। उनको क्या पता कि सामने युगल सरकार प्रतिपल रहते हैं, लाडली जू नहीं रोक पाए। नजदीक जाके कहा, बाबा ये तू कैसे कह रहे हो कि लाडली जू कठोर हो गई। तो उनका संग दोष चढ़ता है ना, लाल जू कठोर हृदय के हैं इसलिए संग दोष से वो कठोर, ऐसे तो पड़ी कोमल। नहीं नहीं मैं कठोर ना है। लाल जू का भेद ही खोल दिया, हम तो केवल दूर से रसा लाडली जू। ऐसे लाडली जी ने बाबा के नेत्र छुए, दिव्य देखा युगल सर चरणों में। लाडली जी से कहा, पहला कार्य करो मेरे को अंधा करो, आंखें खुली तो आपको देखा और देखना नहीं, बस अब और तुरंत हमारी आंखें हटाओ, बस यही रूप में पधारे श्री जी का। बड़ी करुणामयी सरकार, देखो कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो देखो प्रेम चले भरी नयन मैन रस में, स्वामिनी जू के आंखों से अश्रु टपक रहा है और कुंजों में जैसे मोती बिखेरते हुए जा रहे हो ऐसे अश्रु गिरते जा रहे, और चपल चली शीघ्रता पूर्वक, ऐसा हम सबके प्रति उनका प्यार है। ऐसा आपको समझना, बस एक ही कमी है कि हम अपनी ममता को अपने स्नेह को बांटे हुए, नहीं तो जिस दिन मुड़ोगे आप इधर ना, आप खुद देख लेना कि श्री जी का प्यार क्या है। उन्हीं के प्यार से कहीं कुछ प्यार दिखाई दे तो उन्हीं के प्यार का अंश है।

गजगामिनी गजगामिनी प्रिया जो मत वाली चाल से सखी के कांधे पर अपनी भुजा पधराए हुए हंस गति से चल रही, आगे आगे सखियां लताएं निवारती जा रही, जो वृंदावन के पशु पक्षी दर्शन के लिए भाग की मंडली से इतारे उनसे रास्ता करा। वाम करें इतमाम लिए छवि की छड़ी, फूलों की छड़ी लिए हुए हटाती जा रही, लताएं देख रही प्रिया जो आ रही तो ऐसे वो नृत्य करती कि सब फूल बिछ जाते, मानो लताएं अपने पुष्पों से श्री लाडली जू के चरणों में पावड़े बिछा रही। महारानी जू गजगामिनी जू पधार रही हंस गति से।

नहीं सभी पहुंची उधर सेवा परायण नूपुरों की ध्वनि सुन करके देखा हो जिनकी प्रतिमा वही स्वामी जी धारण नेत्र लाडली जी के नेत्र दो चकोर दो चंद्रमा दो वल पंकज दो सखियों ने देखा

नेत्रों को देखकर युगल सरकार की उस पर सखियां गुलाल उड़ा रही है। सी लाडली जो देख के उनकी इस अनुराग को ऐसे प्रेम में विथकित हो रहे हैं, व्याकुल हो रही। कीरत की बिटिया विथकी छवि देख के सखी अखियन की पुतरी पुतरी भई पेख गए। आप ध्यान से सुनिए, आप जो भोग लगाते हैं उसमें जो आप प्यार प्रकट करते हैं ना, प्यारी जू बोलिए प्यारी, सीधे प्यारी जू पा रहे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये बस अंदर से आप श्री जी की सेवा में हैं, बस ध्यान रखो। ये जो महल रचना करते हो कुंज की, जो भोग रचना करके भोग पवाते हो, जो आरती करते हो, जो दुलार करते हो, ये लाडले देख रहे हैं, बस इनका देखना ही हमारे लिए काफी है।

लकी। श्री जी ने कहा कि सखी हमारे कोई बहुत पुण्य होंगे जिससे हम तुम्हारी जैसी उपासिका का दर्शन कुंजों में पाया। ऐसा प्रेम राधा नाम से, ऐसा प्रेम राधा रूप से, तुम्हारा नाम क्या है?

दी, क्या नाम है आपका, किस गांव से आई हो और मेरी इस मानसरोवर की कुंज में क्या कामना रखती हो जो ऐसी उपासना कर रहे हो। श्री लालजू महाराज जो सहचरी बपू है, उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा जू है। श्यामा जू तो मेरा नाम है, ये श्यामा जू तो। और नंद गांव से आए हो, आप जानते हो नंद गांव, श्री जी कहा जानते, पर पूरे ब्रज में श्यामा जू तो मेरा ही नाम है। तो ये ऐसे ही हैं, इनमें पता ही नहीं, खुद को पता नहीं कि इनमें कौन श्यामा जू है कौन श्याम जू है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, जैसे दो शीशी में एक ही रंग भर दे, ऐसे ही दो देह केवल है, वही एक परम रस है। तो कभी प्रिया जू पुकारने लगती हैं, हा प्यारी जू आप कैसे रुस गई मान कर गए, तो लालजू को लगता है ये तो हमारी बात बोल रहे हैं। अब प्रिया जू भाव में प्रीतम के हैं, बुला रहे हा प्रिया, कभी कभी लालजू कहते हे प्रीतम हे प्यार। सखिया यही नहीं समझ पाती कि लाड़िलो के हृदय में चल क्या रहा, बड़ा ये एकांतिक प्रेम है। उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा, मैं नंदगांव की हूं और आपकी अनन्य भक्त हूं। ये शब्द बहुत प्यारा शब्द है, आपकी अनन्य, बस इससे सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए बस एक ठसक ले आइए हमारी भोरी सखी के लिए, लाडली जी के लिए, मैं आपकी हूं। बस देखो ना महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, मुझे कोई परवाह नहीं, नरक भेज दो या कहीं भी जन्म दे दो, बस महारानी जो आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। क्या फर्क पड़ता है, जहां प्यारी जो वहां निकुंज, कहीं भी भेज दो, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख राशि, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपकी अनन्य भक्त हूं। अब सब कुछ छुप सकते हैं, चितवन प्रेमी की बचाई नहीं जा सकती, वो अपनी पहचान बता ही देती है चितवन। जैसे श्री सेवक जी महाराज जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आए, तो बनचंद महाप्रभु ने पहले आदेश कर दिया था जिस दिन सेवक जी वृंदावन में आएंगे सब भंडारा लुटा देंगे राधा वल्लभ लाल का, ऐसे महाप्रेमी के आगमन पर। सेवक जी को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री जी की सेवा की सौंध नहीं लुटानी चाहिए, तो छुप करके ऐसे वेश ढक करके आए, और जब नेत्र मिलाए तो राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल हो गए। महाप्रभु गोस्वामी श्री बनचंद जी सेवा में थे, उन्होंने कहा श्री जी के नेत्र चंचल हो गए, कोई ऐसा प्रेमी आ गया। तो नीचे जब देखा तुम ऐसे वस्त्रों से ढके हुए, बोले सेवक जी ही होंगे। जब निज जनों को भेजा कि आप दामोदर दास सेवक जी है, महाप्रभु आनंद, नेत्र से पता चल जाता है कोई है, निज जन है कोई।

को तुम राधा नाम जपक राधा रूप उपासक ऐसा प्रेम आओ हमारे हृदय से लगो लाडली जी ने अपने हृदय से लगा। अब हृदय से लगने पर थोड़ी छुपाया जा सकता है क्योंकि हृदय की गति प्रेमियों की अलग होती है। ये धड़कन तो बेकार धड़क रही है। जैसे हृदय मशलता रहता है प्रतिपल कोई मशले, ऐसे प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होती रहती प्रेमियों, और जब उनके हृदय मिलते हैं तो वही हृदय जानता दूसरा नहीं जानता। लालजू का हृदय से लगाना और नेत्र में नेत्र मिलना, सखियों से श्री जी ने कहा और कोई नहीं, ये तो प्रीतम है, ये प्रीतम ही हम समझ गए। इतना तो अनन्य धर्म का पालन प्रीतम ही कर सकते हैं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़े हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। क्या किसी से प्यार करते वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करना सही है? प्रिया जी, इस पे आप क्या कहेंगी?
1: अगर मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ और उसके लिए मुझे थोड़ा सा झुकना रुकना पड़ रहा है तो वो डिफरेंट केस है
0: जी।
1: लेकिन वहीं कहीं एक रिलेशनशिप में अगर ऐसा हो रहा है जहाँ मुझे बार बार झुकना, एक है एक बार झुकना कहीं बुरा नहीं होता। अगर अपना ईगो मुझे तोड़ करके आगे बढ़ना है तो ये बुरा नहीं है। अगर मुझे उसकी फीलिंग समझने के लिए अपनी फीलिंग्स को कुछ देर रोकना पड़ रहा है तो ये बुरा नहीं है। थोड़ा सा एडजस्ट करना बुरा नहीं होता, लेकिन ये अगर बार बार होने लगे
0: जी
1: तो ये बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि अगर मुझे चोट लग रही है और बार बार चोट लग रही है तो वो नासूर बन जाता है
0: जी।
1: और नासूर को हील करने में फिर टाइम लगता है, और फिर जब नासूर बीच में आ जाए किसी भी रिलेशनशिप में तो वो रिलेशनशिप फिर रह ही नहीं जाता है।
0: एंड व्हाट डू यू मीन बाय नासूर?
1: बहुत गहरा घाव, बहुत ही गहरा, जो ठीक होने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाए
0: जी।
1: तो ये चीज अगर आ जाती है, बहुत सी बातें आ गई हैं बीच में, बहुत सा पेन आ गया है बीच में, सब कुछ ही में कैम सब कुछ, तो वहां वो रिलेशनशिप वैसे भी नहीं ठहरने वाला है। तो इसलिए अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा करके किसी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करती हूँ तो वो रिलेशनशिप वैसे भी ज्यादा देर स्टैंड कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग और हर ह्यूमन बीइंग को अपनी एक डिग्निटी जो उसकी रहती है वो उसको चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: ये उसकी नीड है और ये नीड होना गलत भी नहीं है, ये जायज है। एक स्वमान, एक सेल्फ रिस्पेक्ट एक लेडी का हो या एक पुरुष का हो, सबको अपनी एक रिस्पेक्ट चाहिए ही होती है। हाँ, उस रिस्पेक्ट में वो कोई सलामी नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर थोड़े शब्द मीठे या जो कहें इज्जत के मांगते हैं उसमें कोई तुरा गलत बात तो है ही नहीं। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर मैं दांव पे रख करके कहीं रिलेट कर रही हूँ अपने आप को या

0: आगे बढ़ रही हूँ किसी के साथ तो बहुत टाइम तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। मुझे अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है और अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, तभी वो जो रिश्ता है और उसकी भी बाउंड्रीज पे मुझे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तब जाके ये जो रिश्ता है वो जो है वो बहुत सुंदर बगीचे के रूप में हमारे सामने आएगा।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं।
1: लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पर म्यूजिक म्यूजिक हमेशा साथ रहता है। म्यूजिकल डायरीज याद दिलाता है, एक सही गाना मूड ही नहीं बल्कि माइंडसेट भी चेंज कर सकता है। थक गए हो, एक सूदिंग मेलोडी ऑन कीजिए। कंफ्यूज्ड हो, लिरिक्स ध्यान से सुनिए। कभी कभी जवाब किसी इंसान में नहीं, एक सिंपल सी धुन में मिल जाते हैं। इसलिए म्यूजिक को सिर्फ सुनिए मत बल्कि उसे महसूस कीजिए।
2: महकता है।
1: और सुनते रहिए म्यूजिकल डायरीज विद आरजे पलक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी, आपके हिसाब से प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट को बैलेंस कैसे करें?
1: प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर बात करें तो अगर हम सामने वाले के आगे खुद को नीचा दिखा रहे हैं
0: जी,
1: तो सामने वाला भी मुझे नीचा दिखाएगा। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या है।
0: क्या बात है।
1: तो कहने का मतलब है कि हमें अपने अंदर, भले हमें शो नहीं करना है उसके आगे, लेकिन हमें अपने आप को कम नहीं समझना है।
0: बिल्कुल।
1: जब हम अपने आप को कम समझने लग जाते हैं, अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं, तो दूसरे वाला तो ऑटोमेटिक हमारे को छोटा सोचेगा ही सोचेगा।
0: बिल्कुल।
1: और प्यार की जहाँ तक बात है, प्यार कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: प्यार एक फीलिंग है और प्यार की फीलिंग को जो है उसमें हम किसी भी तरह की, ये नहीं कि हम कोई झुक के या झुका के हम प्यार को रोक सकते हैं या बढ़ा सकते हैं।
0: सही बात है।
1: प्यार है जो एक बहती धारा है और एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचती है
0: जी।
1: प्यार की परिभाषा का मतलब ये होता है हम कितना उस व्यक्ति के लिए त्याग कर सकते हैं, ये नहीं कि कितना हम त्याग करा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज हम सब क्या कहते हैं कि अपने आप को जो हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे आगे झुके, मैं क्यों झुके। झुकना वहां तक सही है जहां मेरा रिश्ता मुझे लगता है कि हाँ बन सकता है
0: जी।
1: अगर 10% किसी के साथ मेरी कंफ्लिक्ट हो गई या कोई बात हो गई, या अगर 10% मेरी मिस्टेक है और 90% सामने वाले की है, तो मेरे में इतना पेशेंस और इतना मेरे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं अपनी 10% मिस्टेक को एक्सेप्ट करूं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे ही मैं अपनी 10% एक्सेप्ट करूंगी, वो 90% भी चेंज होगा ही होगा।
0: बिल्कुल।
1: हम क्या करते हैं, 90% पहले दिखाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: फिर कहते हैं मेरी तो थोड़ी सी थी ना, थी तो सही, जबकि हमें करना क्या है कि मेरी थी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन जो चीज मुझे अपनी गलती को सुधारना है तो सामने वाला भी जरूर उसको सुधारेगा। सबसे जरूरी है कि हमें आत्मीयता होनी चाहिए। आज आत्मीयता नहीं है, आत्मिक प्यार नहीं है, सेल्फ को कोई जानता नहीं है, तो वो रिस्पेक्ट को भी नहीं जानते। सारे लोग अपनी क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी को ही वो जो कहें रिस्पेक्ट समझते हैं कि मेरे को कोई हर्ट ना करे, लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियस में रह करके मैं को याद कर रहे हैं तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो ईगो है। और अगर मैं आत्मिक स्थिति में सोल कॉन्शियस होकर के याद कर रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिक मेरी लाइफ से, मेरे आसपास वो फ्लो, वो लव जो है वो सर्कुलेट होगा और चारों तरफ उस प्यार की फीलिंग वो ऑटोमेटिक जाएगी। जैसे आप छोटे बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा किसी को प्यार देता है क्या?
0: जी नहीं।
1: लेकिन उससे क्या फील होता है कि ये बहुत प्यारा है, इसको प्यार करें हम।
0: जी।
1: है ना, वो ऑटोमेटिक हर एक को, मतलब अगर कोई रूड भी है ना तो उसके भी स्माइल देख के, बच्चे की स्माइल देख के वो स्माइल करता है, क्योंकि वो इनोसेंट है, अंदर उसके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्यार की दौलत है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब हम अपने अंदर खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो हमारे आसपास वही ऑरा बन जाता है जो दूसरे को भी प्यार ही सिखाता है, और प्यार फिर उस व्यक्ति को खोने से लोग डरते हैं, उसको वो खोने नहीं देंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, अगर कोई इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर हम उसको कोई भी चीज समझा रहे हैं जो आपस में क्रैश कर रही है लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा है और हम उसे बार बार चेस कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, तो क्या ये प्यार है या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना है? आप इस पे क्या कहेंगी?
1: अगर मैं समझा रही हूँ तो पहले मैं ये भी चेक करूँ कि मैं जिस सुर ताल से समझा रही हूँ वो उसके लेवल का है या नहीं।
0: सही बात है।
1: मैं सुनार को समझाना चाहती हूँ लेकिन मेरी भाषा मोचियों वाली है या फिर कहूँ डॉक्टर वाली है लेकिन व्यक्ति सुनार है,
0: बिल्कुल
1: वो गोल्ड स्मिथ है, उसे गोल्ड के ही लेवल पे भाषा समझ आएगी और मैं स्टिक टू हूँ अपनी उसी टोन में
0: जी।
1: तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा जरूर चेक करना है एक रिलेशनशिप में
0: जी।
1: दूसरा वर्ड कहा आपने, चेस। चेस करना तो किसी के भी पीछे भागने की जरूरत होनी नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जो मेरा है वो मेरा रहेगा, वो कहीं जाने वाला है नहीं
0: जी।
1: लेकिन अगर मुझे भागना पड़ रहा है तो इसका मतलब या तो मैं इनसिक्योर्ड हूँ,
0: बिल्कुल,
1: या मैं डर रही हूँ। इनसिक्योरिटी सोसाइटी में बहुत सारी है कि भाई वो सोर्स है इनकम का, मैं बेचारी कहाँ जाऊंगी, इसलिए भी कई बार मैं चेस कर रही हूँ, ठीक है, भाग रही हूँ उसके पीछे कि वो ना जाए मेरी जिंदगी से
0: जी।
1: लेकिन जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ, अगर वो व्यक्ति समझना चाहता है पर समझ नहीं पा रहा है
0: जी,
1: एक ये भी मुद्दा है, समझना तो वो चाहता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, तो यहाँ फिर भी मार्जिन है समझने और समझाने की। लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता है, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट केस हो गया। लेकिन फिर दूसरा पहलू भी ये है कि क्या मैं संपूर्ण सही हूँ जो मैं उसको समझा रही हूँ, और इस सृष्टि का तो नियम है ना कि संपूर्ण सही कोई भी नहीं होता है,
0: बिल्कुल,
1: या उसमें भी अगर 100% अगर वो नहीं सही है तो 90 सही है या 10 सही कुछ तो होगा ही,
0: बिल्कुल,
1: और अगर मैं हूँ तो मैं भी शायद 10% रॉन्ग हो सकती हूँ, तो ये पहलू भी मुझे चेक करने हैं। मैं हमेशा अपना ही पहलू क्यों आगे रख रही हूँ कि मैं सही हूँ, मैं जो समझा रही हूँ वो समझ नहीं रहा है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, शायद मैं समझाने का तरीका रॉन्ग लेकर के चल रही हूँ, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ दोनों ही रिश्तों को मुझे इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप को भी उस पलड़े में रखना है कि आई कैन बी रॉन्ग टू
0: जी,
1: मैं भी गलत हो सकती हूँ, मेरा भी समझाने का तरीका गलत हो सकता है, मैं जो व्यक्ति को जज कर रही हूँ शायद उसकी बात सही हो सकती है, क्या मैं उसकी फीलिंग्स को समझ पाती हूँ जब वो मुझे कुछ समझा रहा होता है, या क्योंकि मेरी बात नहीं समझी गई है तो अब मैं बदला लेती हूँ,
0: बिल्कुल,
1: ये भी मुझे चेक करना है क्योंकि रिलेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, ये एक चीज नहीं है, और जरूरी नहीं कि वो मेरी ये बात नहीं समझाए तो आगे भी कोई बात नहीं समझेगा, ऐसा भी तो कुछ नहीं है ना
0: जी।
1: वो मैं अगर उसके पीछे हूँ तो जरूर उसने कुछ तो समझा है मुझे, तभी तो मैं उसके पीछे जा रही हूँ, तो अगर वो उसने कुछ समझा है और उसने चेष्टा की है तो हो सकता है ये बात वो नहीं उसको जम रहा है, लेकिन आगे वो और भी मुझसे समझेगा, तो मैं कोई भी चीज को छोड़ने के लेवल पर तुरंत नहीं आ जाऊं कि अगर मैं चेस कर रही हूँ, मैं भाग रही हूँ तो क्या मैं सही हूँ या मैं नहीं हूँ, मेरे को छोड़ देना चाहिए। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो छोड़ना शब्द को पहले छोड़ दो।
0: सही बात है।
1: ये छोड़ना शब्द अगर दिमाग में रहेगा तो आज नहीं अभी ही छूट जाएगा, इसलिए छोड़ना मुझे किसी को भी नहीं है इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में पकड़ने के लिए आई हूँ, जकड़ने के लिए नहीं आई हूँ, ये भी ध्यान रखना है, मैंने उसे जकड़ना नहीं है, वो भी मुझे ना जकड़े, मैं भी उसे ना जकड़ू, हाँ हम एक दूसरे को पकड़ के रखें, संभाल के रखें, प्यार से रखें, अपनी बात समझाएं, उसकी बात भी समझें, उसने मेरी दो काटी है तो मैं तीन काटूं, अगर इस पहलू पर रहेंगे तो ये चेजा चेजी ही रहती चली जाएगी और मिलेगा कुछ भी नहीं
0: जी।
1: इसलिए समझना है, वो मेरी नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर उन्हें एक मौका दूं, ठीक है, हाँ मेरा वो डिसरिगार्ड तो नहीं कर रहे, वो मेरी बात नहीं समझ रहे, दैट्स ओके, लेकिन मेरा डिसरिगार्ड तो नहीं कर रहे,
0: बिल्कुल,
1: मेरा डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे, मेरे को नीच तो नहीं दिखा रहे, मेरे इंसल्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बात ही तो नहीं समझ रहे। अब बहुत मल्टीनेशनल कंपनी के जो मैनेजर हैं वो जब घर आए तो धनिया उनकी वाइफ ने लाने को कहा था, और वो रात को 10 बजे आए और धनिया लाए वो बेजान सी धनिया, क्योंकि तब तक सब्जियां बिक चुकी होती फ्रेश, तो पत्नी ने कहा तुम क्या ही कंपनी चलाते होगे, तुमसे तो धनिया भी खरीदना नहीं आता
0: जी।
1: तो इट कांट बी द ट्रुथ कि जो इतनी मल्टीनेशनल कंपनी को इतने बढ़िया से हैंडल कर रहा है तभी तो वो मैनेजर है, लेकिन आपकी धनिया नहीं ला पाया है इसीलिए वो मैनेजर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है,
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमें हर चीज को आंकलन जो है वो मेजरमेंट जो है वो हम सही तरीके से करें तो रिलेशनशिप बहुत सुंदर चलते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी, का सच्चा प्यार ट्रू लव कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ जा सकता है?
1: सच्चा प्यार अगर होगा तो सेल्फ रिस्पेक्ट को तो कभी जाने ही नहीं देगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जहाँ प्यार है और सच्चे प्यार की बात हो रही है तो सच्चा प्यार वही होता है जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं
0: जी।
1: दूसरे को, सामने वाले को अपने से नीचा नहीं दिखाते या उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। सच्चा प्यार ही दूसरों को सम्मान दिलाता है। सच्चा प्यार वो है जो कभी भी हमें झुकने नहीं देगा।
0: बिल्कुल,
1: वो खुद झुकेगा लेकिन वो झुकने नहीं देगा। वो आपस में एक दूसरे को समझ के चलेंगे। जैसे जब हम पढ़ते थे, स्कूल टाइम में थे, तो कहते थे अच्छा दोस्त वही होता है जो हमारी गलतियों को बताता है।
0: बिल्कुल,
1: ये नहीं कि हमें समय पर आने पर हमें नकल दे दे या हमें कोई भी तरह की चीटिंग करा दे, वो सच्चा दोस्त नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो भी दोस्त नहीं होता है जो समय आने पर हमारे को धोखा दे दे। धोखा इन द सेंस कि हमारे को हर जगह पर नीचा दिखाए। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो अकेले में बैठ के समझाना, ये है सच्चे प्यार की निशानी।
0: बिल्कुल,
1: गलत दिशा में उसके साथ हाँ भी नहीं करें लेकिन सबके सामने उनको सपोर्ट करके, कम से कम सबके आगे भी उनको ना बोले, तब उसको कहते हैं सच्चा प्यार। अगर हम चार लोगों के आगे किसी अपने की, किसी से हम प्यार करते हैं, उसको चार लोगों के आगे हम मजाक बना रहे हैं तो ये प्यार नहीं है। हमें अगर प्यार है जिस व्यक्ति से तो हम एकांत में बैठकर उसकी गलतियों को जरूर समझाएंगे, उसको बताएंगे, उसके साथ स्ट्रिक्ट भी होना होगा तो वो भी करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: सबके सामने हम उसका साथ देते हैं, हम उसके लिए खड़े होते हैं। जहाँ सारी भीड़ साथ छोड़ देती है, वो व्यक्ति साथ हो और हमें सही दिशा दिखा दे, उसे कहते हैं सच्चा प्यार। तो सच्चा प्यार कभी भी, उसके लिए हमें सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़नी नहीं पड़ती,
0: बल्कि
1: और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है जहाँ प्यार सच्चा होता है।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ये मेरा खुद का पर्सनली क्वेश्चन है जो प्रिया जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या किसी रिलेशनशिप में नो कहना सेल्फिश होना है या ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक पार्ट है?
1: नो आपने कब कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा, किधर कहा, क्यों कहा, ये बहुत सारे पहलू हैं। सिर्फ एक नो नो नहीं होता है।
0: 5W1H।
1: हाँ बिल्कुल, ये नो नो नहीं है तो ये हमें समझना है। नो मैंने सिर्फ इसलिए कह दिया क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने मुझे नो कहा था, तो ये तो फिर रिवेंज लेना हो गया। और अगर रिश्तों में रिवेंज खेलेंगे तो हो लिया काम। इसलिए नो का हमें ध्यान रखना है कि नो मैंने क्यों बोलना है। देखिए रिश्तों में तो हाँ ही अगर रहती है तो वो रिश्ता लंबा चलता है।
0: बिल्कुल,
1: एक ने कही दूसरे ने मानी, उसे कहते हैं ज्ञानी
0: जी।
1: और अगर ये रिश्ते में रहता है तो उसे कहते हैं समझदानी।
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: समझ करके हमें चलना है। नो शब्द आना ही नहीं चाहिए। अगर नो आ रहा है तो सामने वाले को उसकी नो की कदर होनी चाहिए कि नो माना नो
0: जी,
1: बिल्कुल नो। लेकिन नो अगर बोला गया है तो सामने वाले का भी समझना है कि वो नो उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। मान लो उसे भोजन चाहिए और हमने नो कह दिया क्योंकि आई एम वेरी बिजी
0: जी।
1: तो यहाँ नो कहीं बेस नहीं रखता है। ठीक है, आप कह रहे कि भाई मंगवा लो और उन्हें डॉक्टर ने कहा नहीं बाहर का खाना ही नहीं है। ठीक है, तो नो हमें ध्यान रखना है कि why I am putting no and if it is in relationship तो no means no। लेकिन अगर रिलेशनशिप में अगर हाँ दोनों की है तो वो सबसे ज्यादा जो कहें रिलेशन जो है वो बहुत फलता फूलता है। तो साथ अगर चलना है तो साथ में नो हो और साथ अगर चलना है तो साथ में हाँ हो। इस तालमेल अगर हम बिठा सके तो रिश्ते सदा ही जवान रहते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? ज्योति जी आप बताइए।
2: मेरा सभी से यही मैसेज है कि कभी भी अपने आप को कम ना समझे और दूसरे को भी कम ना समझे। हमेशा ही खुद का भी सम्मान करें और दूसरों का भी सम्मान करें। जहाँ पर प्यार और रिस्पेक्ट की बात आ जाती है तो प्यार हमारे जीवन का एक पार्ट है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे जीवन की एक आइडेंटिटी है जो हमें आगे बढ़ाती है। तो हमें अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें प्यार के साथ अपने उस सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके चलना है।
0: बिल्कुल सही बात है। प्यार तब तक ही खूबसूरत है जब तक वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करे। जहाँ आप खुद को खोना शुरू कर देते हैं वहाँ रुक कर सोचना जरूरी हो जाता है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की कन्वर्सेशन के लिए। मैं हूँ पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।
1: ओम शांति। थैंक यू।

सिनेमाज़ पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

उम्र है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

शख्सियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं,
3: कुछ हटके।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027 हम

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल में दम।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हिट की सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रेडियो महारानी 89.6 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आरजे मोनिका और लेकर के आ गई हूँ आपकी फेवरेट सीरीज कुछ हटके सीरीज। और जैसा कि आपको पता है कि कुछ हटके सीरीज में हर बार एक नई कहानी, एक स्पेशल कहानी आप सभी के लिए लेकर के आती हूँ, तो वैसा ही कुछ खास, कुछ बिंदास आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। और जो आज की हमारी कहानी के हीरो हैं वो आपको कुछ जाने पहचाने और अपने से लगेंगे, आपको हम सफर से लगेंगे, क्योंकि आपके सफर को उन्होंने बहुत ही उम्दा, बहुत ही सही बनाया है। और जो भी दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करते हैं वो इस चीज को बहुत ही आसानी से समझ सकते होंगे, क्योंकि आज के जो हमारे हीरो हैं उनकी कहानी दिल्ली मेट्रो से बहुत जुड़ी हुई है। और जब भी आप ट्रेवल करते हो, जब भी आप कहीं जाते हो मेट्रो से, तो उसमें आपको जो आज के हमारे हीरो हैं उनको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंडिया में आपने देखा होगा सिस्टम में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है और काम जो भी जल्दी बनना चाहिए वो कुछ ना कुछ हो करके वो डिले होता चला जाता है। पर आज के हमारे जो हीरो हैं, आज के हमारे जो कहानी के मेन लीडर हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप से और अपनी बेहतरीन अदाकारी से और अपनी ईमानदारी के साथ में दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कंप्लीट कराया और आज हमारे सफर को बहुत ही आसान बना दिया है उन्होंने। कहीं भी जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमारा ऑफिस बहुत कंफर्टेबल बना दिया उन्होंने, क्योंकि हम जब सफर में आसानी से एसी में बैठ करके जाते हैं, समटाइम्स भीड़ होती है तो आपको थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा, पर हमेशा तो खड़े होकर नहीं जाना पड़ता। और मेन चीज ये है, आपको कम दामों में बहुत ही सही जगह पर पहुंचाया जाता है और कहीं ना कहीं बहुत ही सुविधा के साथ आप पहुंच जाते हैं अपने सफर पे, तो इनका धन्यवाद करना जरूरी है। तो उनका नाम मैं जरूर बताऊंगी आपको और आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा, अच्छा तो ये है हमारे हीरो जिन्होंने दिल्ली मेट्रो को बनाने में इतना योगदान दिया है। आप भी उनको लास्ट में थैंक यू जरूर बोलेंगे तो कहानी छोड़कर कहीं मत जाएगा। बहुत स्पेशल कहानी है आज की हमारी, क्योंकि सुनने में तो थोड़ा आसान सी लगती है और लगता है कि 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, पर ये सफर बहुत ही लंबा रहता है। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर अपनी आरजे मोनिका को और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: दांतों में ब्रश घुमाते समय जिगजैग करें, ना कि सड़क पर बाइक घुमाते समय।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन।

0: कंपनी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
1: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे। जा जाके टंकी बंद कर।
2: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
3: लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाई हूँ मैं तेरे लिए दिल में।
2: रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
4: इसी प्यारे से गाने के साथ एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ आरजे मोनिका और रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा देर तो नहीं कराई होगी, इतने प्यारे प्यारे गानों को सुनकर आपको पता ही नहीं चला होगा कि वक्त कब कट गया। फिर भी माफी चाहूंगी इन सारे वक्त के बाद थोड़ी लेट में आपको मिलने के लिए। पर जो कहानी है आपको मैं सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपको इस इंतजार का गम नहीं होगा। और जो प्यारे प्यारे गाने हैं उन्हें सुनाऊंगी तो उसके बाद तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1932 से, केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के करुक्का पुथुर गांव में। जी हाँ, इतने बड़े गांव में इन्होंने जन्म लिया। सच में इसको तो बोलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो केरला के इस गांव में इन्होंने जन्म लिया और बहुत ही जैसे नॉर्मल पर्सन जो है कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वैसे इनका भी एक सपना था कि ये इंजीनियर बने। और उन्होंने उसके लिए कदम बढ़ा दिया। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ी जैसे सभी नॉर्मल पर्सन की बढ़ती है। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1954 में इंडियन रेलवे ज्वाइन किया। अब ज्यादा चीजें इनकी लाइफ में अभी तक तो नहीं हुई थी। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की, उसके साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया मैं वो आपको जरूर बताऊंगी। इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया 1964 में। तमिलनाडु में एक आइसलैंड है, रामेश्वरम आइसलैंड। यहाँ एक इम्पोर्टेंट रेलवे ब्रिज है, पंबन ब्रिज। ये इंडिया का पहला ऐसा ब्रिज था जो मेन आइलैंड को रामेश्वरम से जोड़ता था। पर हुआ यूं कि दिसंबर 1964 में एक बहुत ही पावरफुल साइक्लोन आया और ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूट गया। ट्रेन गिर जाती है, ट्रांसपोर्ट कम्प्लीटली बंद हो जाता है, सिचुएशन इमरजेंसी वाली हो जाती है। अब गवर्नमेंट का भी प्रेशर और साथ ही साथ लोगों का भी। तो भाई, इस गंभीर सिचुएशन में रेलवे को टारगेट मिलता है कि आपको 3 महीने के अंदर इस ब्रिज को दोबारा से रिपेयर करना है। और इस प्रोजेक्ट को दिया जाता है एक यंग इंजीनियर यानी आज के हमारे हीरो ई श्रीधरन जी को। उन्होंने साइट इंस्पेक्ट की टीम बनाई और काम स्टार्ट कर दिया। और पता है रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिज रिपेयर हो गया सिर्फ 46 दिनों में। हाँ, 90 दिन का जो काम था वो सिर्फ 46 दिन में बनकर कंप्लीट हो गया। और उनके इस काम से सिर्फ वहाँ की जनता ही नहीं बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत खुश हो गई, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया और आगे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रोजेक्ट दिए। तो ईश्वरधरन जी की लाइफ की इस कहानी के साथ हमारे साथ बने रही है। और फिलहाल सुन लेते हैं राजस्थान की लकी जी की फरमाइश पर ये प्यारा सा सॉन्ग जो कि वो डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी फ्यूचर वाइफ को।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी, आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।
2: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: इसी प्यार से गाने के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ आरजे मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ झटकी सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और कुछ झटकी सीरीज में आज कहानी चल रही है ई श्रीधरन जी की। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ से असली पहचान बनती है, और ई श्रीधरन के लिए एक ऐसा ही मोड़ आ गया था और वो था कोंकण रेलवे। बात है 1990 की। इंडिया के मैप में एक ऐसा हिस्सा था जहाँ ट्रेवल करना जो है वो आसान नहीं था। वो हिस्सा था महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के बीच का। खूबसूरत तो वो बहुत था लेकिन कनेक्ट नहीं था। लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था और उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत मुश्किलें भी आती थी। और तभी गवर्नमेंट को आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ रेलवे लाइन बनाई जाए। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी सामने आई तो हर कोई रुक गया। सबको लगा ये बहुत ही रिस्क का काम है और इसको डिले कर देना चाहिए, बाद में देख लेंगे। क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था। सामने थे ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में गहरी नदियां, हर साल जो है वो हैवी बारिश और लैंडस्लाइड्स का खतरा। एक्सपर्ट ने जो है वो साफ कह दिया कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत रिस्की है, डिले होना चाहिए, शायद ही पॉसिबल भी नहीं है, कभी बन भी ना पाए। लेकिन फिर गवर्नमेंट को एक नाम मिल गया, वो था ई श्रीधरन। उन्होंने सिचुएशन को देखा, प्रॉब्लम्स को समझा और एक डिसीजन लिया कि करेंगे, चलो करके देखते हैं। उन्होंने अप्रोच चेंज की। पहली बार बड़े लेवल पर उन्होंने मॉडर्न इंजीनियरिंग टेक्निक यूज की। हर ब्रिज, हर टनल प्रोजेक्ट प्लानिंग के साथ बनाया गया। टीम को क्लियर डायरेक्शन दी गई और सबसे जरूरी कि हर इंसान को जिम्मेदारी दी गई कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आसान नहीं है, इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ करना है और ये रिस्की भी है, तो हर एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। कई बार काम रुक भी गया, कई चैलेंजेस भी आए, लेकिन एक चीज जो है वो कॉन्स्टेंट रही, वो थी कमिटमेंट। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार कोंकण रेलवे बनकर तैयार हो गया। एक ऐसा रूट जिसे लोग इम्पॉसिबल मानते थे वो रियलिटी में बन चुका था। उस दिन एक सिर्फ रेलवे लाइन नहीं बनी थी बल्कि एक भरोसा बना कि अगर लीडरशिप सही हो तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी बन सकता है। तो अब ई श्रीधरन एक नाम नहीं थे बल्कि एक बिलीव बन चुके थे। अगर ये प्रोजेक्ट इनके पास है तो पूरा होकर ही रहेगा। तो उनकी ये पहचान उनको मिली कोंकण रेलवे से। उनको दोबारा से एक नया काम करने का, एक रिस्की काम करने का मौका मिला और उन्होंने उसको करके भी दिखाया। धीरे धीरे उनको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और भी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। तो ई श्रीधरन जी की कहानी में हम बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय करिए लखनऊ की बहुत ही प्यारी किरण जी की फरमाइश पर ये प्यार।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल में दम।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: कहते हैं कि बड़ा काम करना इतना मुश्किल नहीं होता, बस उसके पहले कदम को बढ़ाना, पहली शुरुआत को करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब आप वो शुरुआत, वो कदम बढ़ा लेते हैं तो वो चीजें और आसान बन जाती हैं और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। वेलकम बैक, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके सीरीज में आज कहानी चल रही है ई श्रीधरन जी की। कोंकण रेलवे के बाद ई श्रीधरन जो है वो एक ट्रस्टेड नाम बन चुके थे। लोगों को यकीन हो चुका था कि अगर काम इनके पास है तो कंप्लीट होगा। और फिर आया उनके करियर का सबसे बड़ा चैप्टर 1995, यानी दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट। उस वक्त पता है दिल्ली का हाल क्या था? ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन, टाइम वेस्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत वीक था। मेट्रो का आइडिया था लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि इंडिया में एक बिलीफ बन चुका था प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं होते और उस टाइम पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए। और साथ ही साथ अगर काम छेड़ा है, और दिल्ली जो है वो हमारे भारत की राजधानी भी है, तो सेंटर का काम है, तो इसको कैसे करना है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है, कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ इंडिया की जो है रेपुटेशन इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ी हुई थी। अब ढूंढा जा रहा था वो नाम जो इस रेपुटेशन को संभाल सके, उसको खराब ना होने दे, और साथ ही साथ जो है वो दिल्ली को और बेहतरीन और विकसित बना सके। और तभी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ढूंढा गया, यानी हमारे ई श्रीधरन जी को। देख रहे हो आप, इतने सारे दुनिया भर के इंजीनियर्स को देखने के बाद, ढूंढने के बाद, सबसे प्यारा एक इंसान, जो रिस्पॉन्सिबल इंसान, लीडर एक निकल के आया, वो थे ई श्रीधरन। यानी कुछ बेहतरीन काम तो उन्होंने कर रखा है, यानी कुछ तो काबिलियत ऐसी रही है उनमें जो उन्हें सबसे अलग बनाती है सभी लोगों से। तो भाई, दिल्ली के विकास की जिम्मेदारी और पूरे भारत की रेपुटेशन अब ई श्रीधरन जी के हाथ में थी। और गवर्नमेंट को पूरा भरोसा था कि ये काम वो बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और आप अभी एंजॉय तो कर ही रहे होंगे मेट्रो के सफर को, तो आपको पता ही है कि फिर आगे उन्होंने इस सफर को कैसे आगे बढ़ाया और उन्होंने उस काम को बेहतरीन तरीके से किया या नहीं किया, इसका फ्यूचर में आप तो परिणाम देख ही रहे हैं। फिलहाल मैं आपको फिर भी पास्ट में ले चलती हूँ। ई श्रीधरन जी को ये प्रोजेक्ट मिला, उन्होंने शुरुआत से ही क्लियर कर दिया कि डेडलाइन जो है वो देखो भाई फिक्स होगी, बजट कंट्रोल में रखा जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट करप्शन जो है वो जीरो होगा। अब ये बोलना आसान तो था लेकिन उसको करना थोड़ा सा मुश्किल था। हर दिन थोड़े थोड़े से चैलेंजेस आए जो कि नॉर्मल आते ही आते हैं, लेकिन एक चीज जो है बहुत अलग थी कि उनका काम करने का जो तरीका था वो बहुत डिफरेंट था, लोगों से बहुत अलग। डेली रिव्यू मीटिंग होती थी, टाइम का स्ट्रिक्ट फॉलो होता था और वो हर एक काम को जाकर के खुद ही चेक करते थे, क्योंकि एक गलती जो है वो पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर सकती थी। और फिर इसके बाद वो हुआ जो इंडिया में बहुत रेयर था, दिल्ली मेट्रो का फर्स्ट फेज टाइम से पहले कंप्लीट हो गया, बजट के अंदर कंप्लीट हो गया और बिना करप्शन के कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक मैसेज था कि अगर लीडरशिप ऑनेस्ट है तो सिस्टम भी ऑनेस्ट हो सकता है। आज जब लाखों लोग डेली मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, शायद उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी जर्नी के पीछे एक इंसान की सोच है, एक इंसान की ईमानदारी है। और उस दिन के बाद ई श्रीधरन सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो बन गए मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। उन्हें उनका नाम जो है यहीं से मिला, दिल्ली मेट्रो ने उन्हें एक नया नाम दिया, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त, कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक छोटी काशी की बबली जी की फरमाइश पर एंजॉय करिए।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

वेलकम बैक दोस्तों। कहते हैं कि असली सक्सेस वो नहीं होती जो आप कमाते हो, बल्कि वो होती है जो लोग आपके नाम से महसूस करते हैं। और ई श्रीधरन की कहानी इसी एहसास की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी स्पॉटलाइट नहीं मांगी, कभी फेम के पीछे नहीं भागे, बस अपना काम किया और इतना ईमानदारी से किया कि काम ही उनकी असली पहचान बन गया। और इस काम के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। लेकिन अगर आप किसी आम इंसान से पूछोगे तो वो सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे कि मेट्रो सही टाइम पर आती है और दिल्ली मेट्रो का सफर बहुत ही आरामदायक है। और शायद यही श्रीधरन जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और रिटायरमेंट के बाद भी वो रुके नहीं है। कोची मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने गाइडेंस दी है और आज भी उनके आइडियाज और उनके प्रिंसिपल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को शेप कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज श्रीधरन जी की कहानी हमें एक सिंपल सा मैसेज सिखाती है कि टैलेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, पर डिसिप्लिन जो है वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दिन सक्सेस हमें जरूर मिलेगी, पर उसके लिए हमें ऑनेस्टली और कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात, शॉर्टकट आपको आगे ले जा सकता है, पर आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपके लगातार काम करते रहना है आपको आगे ले जाएगा। और हमेशा याद रखिए कि अगर एक सिंपल इंजीनियर पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है, तो हम अपनी लाइफ में छोटी सी चेंज क्यों नहीं ला सकते। तो आज की जो हमारी कहानी है उसको आप तक पहुंचाने का मेरा एक अहम मोटिव यही था कि आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली का सफर आरामदायक किसने बनाया, और साथ ही साथ ये जानना कि एक इंसान जब दुनिया में चेंज ला सकता है एक नई शुरुआत के साथ, तो आप क्यों नहीं। तो मैं थी आज मोनिका, जिससे आपकी मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ कुछ हटके सीरीज में। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो आप हमारे साथ जरूर जरूर जरूर शेयर कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9654896896। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ में, और तब तक मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद पर काम करते रहिए और इंस्पायर होते रहिए, और साथ ही साथ बदलते मौसम के साथ अपना और अपने अपनों का बहुत ही ख्याल रखिए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि टाइम है, बीत जाएगा, आपका टाइम जरूर आएगा। टाटा, बाय बाय।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: 89.6 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आर चंचली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ हम बात करते हैं हर वीकेंड माँ और बच्चे की सेहत और सुरक्षा की। एक नया जन्मा हुआ बच्चा, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी सुरक्षा हर माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसी सुरक्षा की पहली सीढ़ी होती है वैक्सीनेशन। लेकिन अक्सर पेरेंट्स के मन में सवाल होते हैं, कौन सा वैक्सीन कब लगता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और साथ ही क्या हर वैक्सीन जरूरी होती है। आज इन्हीं सभी जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शिलाखा चमन, अ पीडियाट्रिशियन फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर आज हमारे साथ शेयर करेंगे वैक्सीनेशन रूटीन और बचपन की सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, पोषण की पाठशाला में आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। तो डॉक्टर, सबसे पहले ये बताइए कि वैक्सीनेशन का मतलब पेरेंट्स अक्सर समझते हैं सिर्फ इंजेक्शन होता है, लेकिन अगर बात करें सिंपल शब्दों में, ये बताइए वैक्सीनेशन क्यों इतनी ज्यादा जरूरी होती है बचपन के समय में। और साथ ही अक्सर देखा गया जब ये कहा जाता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, उसे वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, उस समय वैक्सीनेशन कराना क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है।
1: मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है, मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता, बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा एक छोटे से म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: शानदार ब्रेक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आज अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में। तो डॉक्टर, अब आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए बर्थ से लेकर 5 साल तक का जो वैक्सीनेशन का बेसिक रूटीन होता है, उसका एक सिंपल सा ओवरव्यू आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही हमें ये भी बताइए, सबसे पहली वैक्सीन बर्थ के टाइम कौन सी होती है और उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, सो दैट क्या जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उन्हें क्लैरिटी मिल सके।
1: देखिए, बर्थ से 5 साल तक का बेसिक वैक्सीनेशन ये है, हमें जो मैं बीमारियों से, जिन बीमारियों से वो बचाता है, मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है। एक हो गया ट्यूबरकुलोसिस, है ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, काली खांसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, टेटनस, वो सबको पता है, मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, हेपेटाइटिस बी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हेपेटाइटिस ए के खिलाफ भी होता है ना, और टाइफॉइड के खिलाफ, मेनिंगोकोकल के खिलाफ, निमोनिया के खिलाफ, रोटावायरस के खिलाफ, तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ हमें वैक्सीनेशन पहले 2 साल में कर लेनी चाहिए। 2 साल क्यों इम्पॉर्टेंट है? 2 साल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले 2 साल में बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती। जितनी इम्यूनिटी होती है वो उसको माँ के पेट से एंटीबॉडीज जितनी मिली होती है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट, उतनी ही इम्यूनिटी होती है। उसकी नई इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें उसको वैक्सीन देना पड़ता है ताकि वो उस 2 साल में ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे। इसीलिए मोस्टली वैक्सीनेशन जो है पहले 2 साल में हो जाते हैं, उसके बाद बहुत कम वैक्सीन होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं, मोस्टली बूस्टर डोज देने पड़ते हैं, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ता। और सबसे पहले वैक्सीन जो बर्थ पे दी जाती है वो ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी और पोलियो की वैक्सीन है, जो हमें पता है कि बहुत ही जानलेवा बीमारी है। अगर पोलियो हो जाए तो बच्चा विकलांग हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे पॉपुलेशन में बहुत कॉमन पाई जाती है, इसलिए उससे प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। और हेपेटाइटिस बी तो लिवर डैमेज करता है, और उससे बचाव के लिए हमें जरूरी है कि हम उसको वैक्सीन बर्थ पे ही दे दें।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि भी डॉक्टर ने बताया, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके एंटीबॉडीज हमें सिर्फ वैक्सीन के थ्रू ही मिलती हैं। सो आज जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, प्लीज अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। इन केस अगर कोई वैक्सीन मिस हो जाती है तो डॉक्टर आपको उसका भी सॉल्यूशन बताते हैं। सो प्लीज जाइए आज ही अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए और अपने बेबी का एक हेल्दी वैक्सीनेशन रूटीन रखिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, आपके और भी सवालों के जवाब लेकर हम फिर से लौटेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शिलाका फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूँ, कई बार पेरेंट्स पूछते हैं अगर एक वैक्सीन मिस हो जाए तो क्या करें इस केस में, और साथ ही ये बताइए इस सिचुएशन में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे सभी पेरेंट्स को। टाइम गैप का कितना इम्पोर्टेंस होता है एक वैक्सीनेशन के बीच, और साथ ही अगर वैक्सीन कभी डिले हो जाए तो इससे कितनी बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है।
1: देखिए, अगर एक वैक्सीन मिस हो जाए तो हम घबराना नहीं चाहिए। पहले तो हम कोशिश करें कि वैक्सीन मिस ना हो, मगर हमें घबराना नहीं है। वैक्सीन वहीं से कंटिन्यू करना है, इसको हम बोलते हैं कैच अप वैक्सीनेशन। जो आपने वैक्सीन दिया है वो भी काउंट होगा, बट जो आपका छूट गया है वो हम शुरू कर देंगे देना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं और उनसे सलाह लें। टाइम गैप का ये इम्पोर्टेंस है कि हर ये टाइम गैप जो होता है ये साइंटिफिकली हम डिसाइड किया होता है आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च। रिसर्च के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कितना टाइम गैप है। टाइम गैप इसलिए होता है ताकि जब हम एक वैक्सीन देते हैं तो उससे इम्यूनिटी आने में कुछ टाइम लगता है। जब वो इम्यूनिटी आती है वो फिर कम भी हो जाती है, तो बूस्टर डोज जो होता है उसको फिर से बूस्ट अप करता है ताकि इम्यून सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो, है ना। टाइम गैप इसलिए है ताकि आप एक वैक्सीन का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। डिले होने से क्या रिस्क बढ़ेगा? डिले होने से ये रिस्क बढ़ेगा कि जब उसकी इम्यूनिटी थोड़ी लो पे होगी तो उस बीमारी का खतरा बना रहेगा। पूरे से बीमारी का खतरा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपने पहले वैक्सीन उसका लगाया है तो कुछ प्रोटेक्शन तो होगी, बट फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम टाइम से वैक्सीन दें। बट अगर टाइम से वैक्सीन नहीं भी दे पाए तो हम अपने डॉक्टर के पास जाएं और कैचअप वैक्सीन दिलवाएं अपने बच्चे को।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड डॉक्टर ने आज बहुत बड़ा डाउट क्लियर किया है। कई पेरेंट्स को यही डाउट होता है कि वैक्सीन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है, इन केस अगर कोई वैक्सीन छूट जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आज हमें डॉक्टर ने बताया है कि जो वैक्सीन होती हैं ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में क्रिएट करती हैं, सो दैट कि हर एक बेबी के लिए वैक्सीन उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इम्पोर्टेंट होता है मदर मिल्क। एंड आज डॉक्टर ने ये भी बताया इनकेस अगर कोई वैक्सीन मिस हो जाती है तो आज ही आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए अबाउट कैचअप वैक्सीन, सो दैट कि आपके जितने डाउट्स हैं, जितने क्वेरीज हैं, वो सब सॉल्व हो सके। इसके साथ आज डॉक्टर ने बहुत ही स्मार्ट टिप हमें दी है। जितने भी पेरेंट्स आज हमें सुन रहे हैं, आप प्लीज एक रिमाइंडर क्रिएट कीजिए। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आपके बेबी का वैक्सीन कब हुआ है एंड नेक्स्ट डेट क्या होने वाली है, सो दैट कि आपके लिए वैक्सीनेशन पीरियड थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाए। इसी के साथ बहुत सारे सवालों के जवाब फिर से लेकर लौटेंगे, लेकिन एक म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए, पैरासोटेक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पोषण की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में बचपन की पहली सुरक्षा यानी कि वैक्सीनेशन। और आज इस टॉपिक पर हमारे साथ अपने एक्सपर्ट गाइडेंस देने के लिए डॉक्टर शिलाखा चमन फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, अगर वैक्सीन की बात होती है तो एक मिथ भी आता है, एंड चलिए अब बात करते हैं मिथ वर्सेस फैक्ट्स पर। डॉक्टर, ये कॉमन मिथ है कि वैक्सीन से बच्चा वीक हो जाता है, प्लीज ये मिथ है, ये कितना बड़ा डाउट है, आज आप इस डाउट को क्लियर कीजिए। एंड साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन से फीवर या साइड इफेक्ट हो जाते हैं, ये कितना सच है, इसके चलते क्या वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर इसको रोक देना चाहिए?
1: देखिए, वैक्सीन से बच्चा वीक नहीं होता, बच्चा तो पहले से ही वीक होता है। इम्यूनिटी, अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, क्योंकि उसके खुद की इम्यूनिटी नहीं होती, उसको जो इम्यूनिटी है वो उसको माँ के थ्रू एंटीबॉडीज जो प्लेसेंटा से पास ऑन होती है, पेट में जब बच्चा होता है तब माँ से जो एंटीबॉडीज पास ऑन होती है वो उसको प्रोटेक्शन देती है। तो बच्चा तो पहले ही वीक है, वैक्सीन उसको स्ट्रांग करता है, उसकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है ताकि वो कोई भी इन्फेक्शन हो उससे लड़ सके। तो वैक्सीन कोई भी वीक नहीं करता बच्चे को। दूसरी बात है, अगर वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकता है, फीवर एक नॉर्मल साइड इफेक्ट है, उससे घबराना नहीं है। आपके डॉक्टर आपको हमेशा पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब करते हैं वैक्सीनेशन के साथ, तो वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। पेनलेस वैक्सीन और पेनफुल वैक्सीन, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, और जैसे जो भी पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं हमें पेनलेस वैक्सीन ही चाहिए। पेनलेस का मतलब ये नहीं है कि उसको लगाते हुए दर्द नहीं होगा, पेनलेस का मतलब ये है कि उसके लोकल इफेक्ट कम होगा। और पेनलेस या पेनफुल वैक्सीन सिर्फ डीपीटी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं, बाकी सारे वैक्सीन एक जैसे होते हैं, उनमें पेनलेस या पेनफुल कुछ भी नहीं होता।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड जैसे कि आज डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीन से जुड़े कितने मिथ हैं एंड कितने फैक्ट्स हैं, वैक्सीन लगवाने से पहले, कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए, सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिल सके अबाउट योर बेबी हेल्थ, कि आपके बेबी को क्या जरूरी है, आपका डॉक्टर बेहतर तरीके से आपको बता सकता है किस तरह की वैक्सीन आपके बच्चे के लिए सही है, आपके डॉक्टर को बेहतर पता है। सो प्लीज किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह के रिस्क को अपने तक लेकर मत बैठिए, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए एंड आज ही अपने बेबी के वैक्सीन शेड्यूल को एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। तो डॉक्टर ये बताइए, अगर बात की जाए इम्यूनिटी की, तो क्या सिर्फ नेचुरल इम्यूनिटी ही काफी होती है या फिर वैक्सीनेशन के बाद भी इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है?
1: देखिए, नेचुरल इम्यूनिटी एक मतलब ये ऐसा आप समझ लीजिए कि हम ट्रेन कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम ट्रेन है जनरल वे में कोई भी अगर बीमारी होगी तो नेचुरल इम्यूनिटी उसका टैकल कर सकती है, मगर वो सब चीज़ों को टैकल नहीं कर सकती, सभी बीमारियों के खिलाफ नहीं काम

0: 89.6 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बचपन की पहली सुरक्षा यानी कि वैक्सीनेशन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शिलाका फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन के बाद घर पर पेरेंट को किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही अगर बच्चा वैक्सीनेशन के दिन थोड़ा सर्दी खांसी या हल्के फीवर में है, तो क्या वैक्सीनेशन डिले हो सकती है या फिर कंटिन्यू रखनी चाहिए? और अगर बात की जाए प्रीमैच्योर बेबीज की या फिर लो बर्थ वेट बेबीज के लिए, वैक्सीनेशन का अप्रोच क्या होना चाहिए?
1: देखिए, जब वैक्सीन करा के बच्चा घर ले जाता है तो उसको थोड़ा सा इरिटेबिलिटी और फीवर होना नॉर्मल है। उसके लिए डॉक्टर आपको पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब करेंगे, अपने बच्चे को दे देना चाहिए। दूसरा, कि कभी भी वैक्सीनेशन साइट को दबाना या मालिश नहीं करनी है। तीसरा, आप बच्चे को दूध पिलाते रहिए अच्छे से, है ना, और उसको कम्फर्टेबल रखिए, उसको आराम दीजिए। ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ज्यादा खेलना नहीं है, आराम से जैसा वो कम्फर्टेबल रहे वैसा रखना है। अगर थोड़ी सर्दी जुकाम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा फीवर हो, आप वैक्सीन दिला सकते हैं सेफली। इसमें वैक्सीन डिले नहीं करना चाहिए। और प्रीमैच्योर बेबी अगर स्टेबल है तो उसको बर्थ की वैक्सीनेशन दे देनी चाहिए। वैक्सीनेशन स्केड्यूल सेम ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता, मगर अगर सिक है बच्चा तो मतलब डॉक्टर की सलाह के

0: बाद ही आगे बढ़ना चाहिए।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस छोटे से म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शिलाखा फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ये बताइए, जितने भी वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का रूटीन यानी कि शेड्यूल फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जितने भी पेरेंट्स आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए आप प्रैक्टिकल टिप्स क्या देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने बेबी के वैक्सीनेशन शेड्यूल को एक फ्लो में रख सकें।
1: हाँ जी, वर्किंग पेरेंट्स के लिए मुश्किल तो है, मगर वो अगर वो प्लानिंग करें अच्छे से तो वो कभी भी डिले नहीं करेंगे। सबसे पहले उनको अपने कैलेंडर में मार्क कर लेनी चाहिए डेट्स कि कब हमारे बच्चे का वैक्सीनेशन है, और रिमाइंडर सेट कर लेने चाहिए दोनों पेरेंट्स को। तीसरा, जो भी आपका रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, उसको सुरक्षित रखिए और उसकी फोटो हो सके तो अपने मोबाइल में रखिए। तीसरी बात है, किसी भी वीकेंड पे या जिस दिन छुट्टी हो या उस दिन वो हाफ डे लेके वैक्सीनेशन करा। चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना बहुत जरूरी है। दोनों, माँ को भी बाप को भी, मॉम डैड दोनों को पता होना चाहिए वैक्सीनेशन स्केड्यूल क्या है और हमारे बच्चे का वैक्सीन कब ड्यू है, ताकि अगर एक बिजी हो तो दूसरा वैक्सीन पूरा करा सके। पांचवा, हमें जो भी केयर गिवर है उनको, जो भी जैसे नानी दादी या कोई और केयर टेकर है घर में बच्चे के, उसको भी इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो रिमाइंडर दे सके और वो बच्चे की टेक केयर कर सके आफ्टर वैक्सीनेशन। और आजकल तो बहुत सारे एप्स भी हैं जिनमें आप डाल सकते हो और वो आपको रिमाइंडर दे देते हैं कि वैक्सीनेशन अब है। तो ये कुछ चीजें हैं वर्किंग पेरेंट्स के लिए जो वो कर सकते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं मोस्टली वर्किंग पेरेंट्स को सैटरडे की डेट दे देती हूँ ताकि वो सैटरडे आके आराम से वैक्सीनेशन करा सके। संडे को भी बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल होते हैं, तो आप अपना वैक्सीनेशन संडे को भी करा सकते हो। कोशिश करो कि डिले ना करो, बट एक दो दिन या एक हफ्ते डिले करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड जैसे कि आज डॉक्टर ने बताया कि आप एक स्मार्ट वे में अपने बेबी के वैक्सीनेशन शेड्यूल को एक फ्लो में रख सकते हैं, जैसे कि कई तरह की एप्लीकेशन आती है जहां पर एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। आप लोग अपने घर के जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें बता सकते हैं कि आज बेबी की वैक्सीनेशन हुई है, ठीक इतने दिनों के बाद फिर से एक और वैक्सीनेशन होनी है, तो एक बार याद दिला दें। एंड जितने भी वर्किंग पेरेंट्स आज हमें सुन रहे हैं, प्लीज ट्राई कीजिए कि आप अपने डॉक्टर से मिले, एंड वीकेंड में या फिर जिस भी दिन आप फ्री होते हैं उस दिन ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, सो दैट कि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सके एंड आपके बेबी का वैक्सीन मिस ना हो सके। बिकॉज कहा जाता है कि बचपन की पहली सुरक्षा वैक्सीनेशन होती है। जितना ही इम्पोर्टेंट एक बच्चे के लिए माँ का दूध होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक वैक्सीन होता है। सो इस बात का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बेबी का ख्याल रखिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बचपन की पहली सुरक्षा यानी कि वैक्सीनेशन के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिलाका फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर बात की जाए वैक्सीन की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक के वैक्सीन में कितना फर्क होता है, और साथ ही बचपन की वैक्सीन फ्यूचर में किस तरह की सीरियस डिसीजेस से बचा सकती है?
1: गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक के वैक्सीन में फर्क ये होता है कि प्राइवेट क्लिनिक सारे जो गवर्नमेंट वाले वैक्सीन है वो कवर करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा डिजीजेस कवर करते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट हमें ऑलमोस्ट 12 डेडली डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करती है, मगर प्राइवेट क्लिनिक्स पे आप पैसे देके जो एक्स्ट्रा डिजीजेस हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, मेनिंगोकोकल, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, इनके खिलाफ जो है वैक्सीन लगा सकते हो। तो ये फर्क है, वो एक्स्ट्रा सेफ्टी है, एक्स्ट्रा सेफ्टी और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको प्राइवेट वैक्सीन से मिलेगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कुछ जो गवर्नमेंट से लग रही है वो गवर्नमेंट से लगवा ले और जो प्राइवेट से लग रही है वो प्राइवेट से लगवा सकते हैं, तो इससे आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा। बचपन की वैक्सीन फ्यूचर में हमें बहुत सारे जानलेवा बीमारियों से बचाती है, जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस ए बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, दूसरा मीजल्स, मेनिंगोकोकल डिजीजेस, मम्स, काली खांसी, पर्ट्यूसिस, रोटा वायरस, रुबेला, देन टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, येलो फीवर, तो बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो मेरा सारे जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी केयर गिवर्स हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन से ना डरे। वैक्सीनेशन आपके बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए है। बहुत सारे मिथ्स हैं वैक्सीनेशन को लेके, मगर ओवरऑल साइंटिफिक स्टडीज ये शो करती है कि जो वैक्सीन जो बच्चे लेते हैं वो हेल्दी ग्रो करते हैं, बेटर ग्रो करते हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए अपने नियर बाय पीडियाट्रिशियन के पास जाएं और अपने बच्चे को टाइम से वैक्सीन लगाएं, ताकि वो आगे हेल्दी ग्रो कर सके। थैंक यू
0: सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। उम्मीद है आज का एपिसोड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और रियश्योरिंग रहा होगा। वैक्सीनेशन बचपन की पहली सुरक्षा है जो बच्चे को कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचाता है। आज हमने जाना कि सही समय पर वैक्सीन लगवाना और डॉक्टर की सलाह फॉलो करना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। और आज वैक्सीनेशन पर अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी थी डॉक्टर शिलाका चमन, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज डॉक्टर ने हमें वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस और शेड्यूल को इतना सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझाया कि हर पेरेंट्स के लिए वैक्सीनेशन अब एक बहुत ही सॉर्टेड काम हो गया है। सो बस यही कहना चाहती हूँ कि इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी बेबी का ख्याल रखिए। फिलहाल मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का, मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या?
1: नहीं
0: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ बात में यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूचा मत में मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, ट्यूबलाइट
0: गिर गया। साले इतने हंसाए, तू कूद गया?
2: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
0: क्यों
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
0: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: खिलाना।
1: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
2: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
1: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
3: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
1: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
3: आवारा हूँ, आवारा।
1: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना, ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली, तुम बोलते रहो।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता, चेहरे बदले, मगर आवाज वही पुरानी। रात बाकी, बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
2: है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
1: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सोचिए, सिर्फ एक 13 साल की लड़की और उसके सामने हजारों लोग, लाइट्स और कैमरा, फिर एक ऐसी आवाज जो सबको चुप कर दे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट 200 मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। ये कहानी है सुनिधि चौहान की, जिन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ गाएंगी और सिर्फ जीतेंगी। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ। उनका असली नाम था निधि चौहान। पापा थिएटर आर्टिस्ट और मम्मी घर का काम संभालती थी। घर में म्यूजिक का माहौल था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये छोटी सी बच्ची एक दिन इंडिया की सबसे पावरफुल फीमेल वॉइस बनेगी। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही सुनिधि स्टेज पर परफॉर्म करने लगी थी। स्कूल फंक्शंस, लोकल शोज, जहां भी मौका मिलता वहां गा देती और लोग बस देखते रह जाते। फिर आया 1996 का एक शो, मेरी आवाज सुनो, एक सिंगिंग रियलिटी शो। 13 साल की सुनिधि ने उस शो को जीत लिया। तब जज थी लता मंगेशकर जी, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जीतने के बाद सुनिधि और उनके पेरेंट्स मुंबई शिफ्ट हो गए। सपना था बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग का, लेकिन मुंबई सपने पूरे करने से पहले उन्हें तोड़ता भी है। कई दिन स्ट्रगल में गुजरे, स्टूडियो के चक्कर, ऑडिशन, वेटिंग, रिजेक्शन। फिर एक दिन म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव ने उनकी आवाज सुनी और 1999 में आई फिल्म मस्त, सॉन्ग था रुकी रुकी सी जिंदगी। बस यहीं से सुनिधि चौहान का नाम बॉलीवुड में गूंज उठा। सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी असली जंग बाकी थी। और कैसे उन्हें सक्सेस मिला और कैसे उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इसका

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: राजा।
1: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: जब 16 साल की लड़की को फेम मिलता है तो लोग तालियां भी बजाते हैं और उंगलियां भी उठाते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में सुनिधि चौहान की। फिल्म मस्त के बाद सुनिधि को काफी सारे ऑफर्स मिले। उनकी आवाज में एनर्जी थी, बोल्डनेस थी, एक अलग ही एटीट्यूड था, लेकिन इंडस्ट्री में कंपैरिजन शुरू हो गया। ये नेक्स्ट अलीशा चिनॉय है, ये सिर्फ फास्ट सॉन्ग्स के लिए ठीक है। सुनिधि को एक टैग मिल गया, आइटम सॉन्ग्स और हाई एनर्जी नंबर्स की सिंगर। उन्होंने महबूब मेरे, धूम मचा ले, बीड़ी जले ले ऐसे टाइप के सॉन्ग्स गाए जो सुपर हिट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये फील होने लगा कि लोग उनकी वर्सेटिलिटी को नहीं समझ रहे हैं। पर्सनल लाइफ भी इजी नहीं थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने से काफी बड़े कोरियोग्राफर बॉबी खान से शादी कर ली फैमिली के अगेंस्ट जाकर, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ एक साल में टूट गया। एक यंग लड़की जिसके पास फेम है, पैसा है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं। इस वक्त सुनिधि डिप्रेशन फेज से भी गुजरी, लेकिन यहीं से उनकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। उन्होंने डिसाइड किया, अब मैं सिर्फ सरवाइव नहीं करूंगी, मैं रूल करूंगी। और कैसे उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।
1: I've been

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हर सिंगर गा सकता है, लेकिन हर सिंगर खुद को दोबारा बना नहीं सकता। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की। साल 2000 के मिड्स में सुनिधि ने अपनी आवाज पर काम करना शुरू किया, क्लासिकल ट्रेनिंग ली, वोकल कंट्रोल इम्प्रूव किया, और फिर आया फेज जहां लोगों ने कहा ये सिर्फ आइटम सॉन्ग सिंगर नहीं है। सॉन्ग्स लाइक भागे रे मन, सजना वे सजना, आ जरा, शीला की जवानी, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सॉफ्ट रोमांटिक भी गा सकती हैं, सेंशुअल भी, क्लासिकल टच भी, और फुल रॉक स्टार एनर्जी भी। उनकी स्टेज परफॉर्मेंस एक अलग लेवल की थी। लाइव कॉन्सर्ट्स में वो सिर्फ गाती नहीं थी, स्टेज को खुद ओन कर लेती थी। उन्होंने वेट लॉस किया, फिटनेस पर फोकस किया, स्टाइल ट्रांसफॉर्म किया। सुनिधि अब सिर्फ सिंगर नहीं थी, वो परफॉर्मर थी। फिर उन्होंने इंटरनेशनल टूर्स किए, इंग्लिश ट्रैक्स भी रिकॉर्ड किए। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करी, और कैसे आगे उनकी लाइफ में प्यार, मदरहुड और बैलेंस आया, सबके बारे में करेंगे बात मगर इस गाने के बाद।

0: भी करते हैं, सुनो
1: इंस्टाग्राम
0: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
1: तुम अभी इसे लायक?
0: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
1: अच्छा,
0: बस मेरी शायरी सुन लो।
1: फिर
0: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
0: अरे, बाय। हेलो।

क्या एक रॉक स्टार सिंगर एक काम मदर बन सकती है? स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की। साल 2012 में सुनिधि ने म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से शादी की। ये रिश्ता मैच्योर था, समझदारी भरा था। 2018 में उनके बेटे का जन्म हुआ। मदरहुड के बाद उन्होंने थोड़ा स्लो डाउन किया लेकिन म्यूजिक कभी नहीं छोड़ा। सुनिधि ने इंटरव्यूज में कहा, मैं अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। उन्होंने रियलिटी शोज में जज का रोल भी निभाया, इंडियन आइडल, द वॉइस। अब वो सिर्फ सिंगर नहीं थी, मेंटोर भी थी। एक टाइम जो लड़की स्ट्रगल कर रही थी, अब वो नए सिंगर्स को प्लेटफॉर्म दे रही थी। और आगे कैसे सुनिधि चौहान द अनस्टॉपेबल वॉइस बनी, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अगर बॉलीवुड की फीमेल वॉइसेस की लिस्ट बनेगी ना तो सुनीति चौहान का नाम बोल्ड लेटर्स में लिखा जाएगा। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सुनीति चौहान की, जिन्होंने 3000 से भी ज्यादा गाने गाए, मल्टीपल लैंग्वेजेस, फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? उन्होंने कभी अपनी इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इंडस्ट्री में जब सॉफ्ट स्वीट वॉइसेस का ट्रेंड था, तब उन्होंने बोल्ड हस्की पावरफुल वॉइस को मेनस्ट्रीम बना दिया। उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस है, रेबिलियन है, फ्रीडम है। सुनीति चौहान सिर्फ एक सिंगर नहीं है, एक इरा है। और शायद इसीलिए जब भी स्टेज पर उनका नाम अनाउंस होता है, क्राउड बस एक ही चीज चिल्लाता है, वंस मोर, वंस मोर। तो ये थी कहानी सुनीति चौहान की, जो अपने में ही एक लेजेंड है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। इस पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आगे आप किस इंसान की, किस पर्सनालिटी, किस फेमस सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में सुनना चाहते हैं, हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
3: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
4: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
3: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
5: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
3: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ आवारा।
3: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग सुनना न भूले। सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
7: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंगदान, उतक दान और देहदान से जुड़े लोगों के अनुभव को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ये भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा है और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी है।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांस

0: ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है?
1: हाँ, देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है, और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है, और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
1: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइव डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट, मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजंस हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो आपको बॉडी भी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशन में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।

save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसका ऊपरी लेयर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शंस जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं। तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की जरूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। मैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौड़ जी से जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में, तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियां सामने आती हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है, वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
2: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है, उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपके थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता। और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता, तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
1: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप इसके बारे में
2: देखिए। स्किन डोनेशन मैं ये चीज अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है। कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है, मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
1: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते।
1: जी, और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्पररी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है, और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं, उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है, और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है, और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है। किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना है, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है, स्किन डोनेशन?
2: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
1: पूरी मोटाई के साथ
2: निकाला जाता है और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
1: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन, ये आपको अश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो। यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट्स में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है तो उसके स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ किसी शॉर्टकट के फेवर में नहीं होती। आप चाहो मेहनत करो फिर भी सब कुछ स्मूथ नहीं चलता। आज बिजनेस अनप्लग में मैं किसी नाम से शुरुआत नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सम स्टोरी डिजर्व पेशेंस, उन्हें धीरे धीरे खुलना चाहिए। मैं हूँ गीत एंड हियर वी टॉक अबाउट पीपल जो ओवरनाइट सक्सेस के पोस्टर पर नहीं आते, लेकिन जिनकी जर्नी रियल होती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनकी लाइफ में रिसोर्सेज कम थे, ऑप्शंस लिमिटेड थे और एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा। बैकग्राउंड सिंपल था, फैमिली भी सिंपल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ ने बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा दी थी। फॉर्मल एडुकेशन एक पॉइंट के बाद कंटिन्यू नहीं रह पाई, नॉट बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था बट बिकॉज सर्वाइवल केम फास्ट। जब आपको चूज करना पड़े ना बिटवीन डिग्री एंड डेली नीड्स, तो ड्रीम्स थोड़ा वेट पर चले जाते हैं। इस इंसान ने भी वही किया, फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा सिर्फ इसीलिए ताकि काम मिल सके। अर्ली इयर्स में इनको ये समझ आ गया था कि कंफर्ट जोन जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो काम मिला वो किया, नो ईगो नो कंप्लेंट्स। 2 साल तक पूरी सिंसेरिटी के साथ इन्होंने ट्राई किया, बट बिजनेस डजंट ऑलवेज रिवॉर्ड अफोर्ड इमीडिएटली। वो वेंचर फेल हो गया एंड दैट फेज वॉज रियली टफ। पैसे का प्रेशर, घर का प्रेशर और खुद से एक सवाल, अब आगे क्या। देयर वॉज अ डे जब बेसिक थिंग्स भी स्ट्रगल बन जाती, सब एक साथ हैवी लगता और यही वो वक्त होता है जहाँ लोग रुक जाते हैं। बट ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती, क्योंकि जब सब कुछ नेगेटिव लग रहा था तब इस इंसान ने एक सिंपल चीज नोटिस की, चाहे लाइफ कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लोग एक चीज एंजॉय करना नहीं छोड़ते, समथिंग टेस्टी, समथिंग कम्फर्टिंग। फूड इज इमोशन, और जब इमोशन समझ आए तो बिजनेस भी डायरेक्शन दिखाता है। अभी ये सिर्फ एक थॉट था, एक ऑब्जर्वेशन, एक्शन अभी बाकी था। कैसे एक ऑर्डिनरी स्पेस जैसा एक सिनेमा हॉल एक टर्निंग पॉइंट बन गया, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ गीत। और आज मैं एक ऐसे इंसान की लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी लाइफ ने इजी मोड कभी ऑन ही नहीं किया। अब कहानी थोड़ी और रियल होने वाली है। बिजनेस फेल हो चुका था, सेविंग ऑलमोस्ट जीरो और फैमिली की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली प्रेशर में थी। इस फेज में इस इंसान ने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं लिखा, बस एक चीज की, काम। जो काम मिला वो किया, कभी एक सिनेमा हॉल के अंदर, कभी उसके बाहर, कहीं काउंटर्स पे हेल्प, कहीं पोस्टर चिपकाना, कहीं सीट रिपेयर, कहीं छोटी मोटी मेंटेनेंस। सैलरी ज्यादा नहीं थी बट इट वॉज ऑनेस्ट वर्क। एंड ऑनेस्टली ये वही स्टेज होती है जहाँ ईगो या तो टूट जाता है या फिर कैरेक्टर बन जाता है। लाइफ यहाँ भी स्मूथ नहीं थी, रेंट के इश्यूज, बेसिक एक्सपेंसेस का स्ट्रेस, इतना कि एक टाइम पर घर छोड़ना भी पड़ा। इमेजिन दैट मोमेंट जब आप सिर्फ इसीलिए शिफ्ट करते हो क्योंकि आप अफोर्ड नहीं करते हो। बट स्लोली हार्ड वर्क नोटिस होने लगा। सिनेमा हॉल की कैंटीन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मंथ कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड इनकम। इट वॉजंट बिग मनी बट इट वॉज स्टेबिलिटी। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, रोज लोग मूवी देखने आते, हंसते, चिल करते और इंटरमिशन में एक ही चीज ढूंढते, कुछ खाने की। ये इंसान सिर्फ काम नहीं कर रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था। लोग क्या पसंद करते हैं, कौन से फ्लेवर्स चाहते हैं, कौन सी चीज रिपीट होती है, विदाउट एनी MBA, विदाउट एनी फॉर्मल रिसर्च, बस रियल लाइफ डेटा। और यहीं पे पहली बार दिमाग में इनके एक थॉट आया, व्हाट इफ आई क्रिएट समथिंग। अभी कोई बिजनेस प्लान नहीं था, बस एक आइडिया था। और आइडियाज अक्सर सबसे पहले चुप होते हैं। और इस पॉइंट पर ना कोई ब्रांड था, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई इन्वेस्टमेंट का बैकअप, बस एक्सपीरियंस और एक स्ट्रॉन्ग विल कि इस बार कुछ अलग ट्राई करना है। कैसे एक छोटी सी शुरुआत होम मेड लेवल से स्टार्ट होती है, कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट लोगों का फेवरेट बनने लगता है, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। गाना सुनते हैं, पहले गाने के बाद लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।
1: वी बैक

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटोस अपने हमेशा सब मांगे, उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर या पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

वेलकम अगेन, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपको एक जर्नी सुनाने वाली हूँ बिना नाम बिना ब्रांड सिर्फ स्ट्रगल चॉइसेस और ऑब्जर्वेशन की कहानी। अब टाइम है उस नाम को सामने लाने का जिससे इस कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज चंदू भाई वीरानी, फाउंडर ऑफ बालाजी वेफर्स। यस, वही बालाजी वेफर्स जिसके पैकेट्स आज ऑलमोस्ट हर घर, हर शॉप, हर एज ग्रुप तक पहुंच चुके हैं। सोचो, जो सफर एक सिनेमा हॉल की कैंटीन से स्टार्ट हुआ आज वो इंडियन स्नैक इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुका है। चंदू भाई वीरानी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बालाजी वेफर्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक हैबिट बना दिया। आज बालाजी वेफर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ऑपरेट करती है। गुजरात से शुरू हुआ ये ब्रांड आज नेशनल प्रेजेंस रखता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स वेफर्स, सेव, नमकीन रेंज हर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग होल्ड। टर्नओवर की बात करें तो कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ में है और ये प्योर नंबर्स हैं। बालाजी वेफर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, इट्स अ फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन जहां 5000 लोग काम करते हैं। सोचो, उस इंसान को जो कभी रेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज हजारों फैमिली की आशाएं उसके विजन से जुड़ी हुई हैं। फैक्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लॉजिस्टिक, रिटेल रीच, एवरीथिंग बिल्ड स्टेप बाय स्टेप, नो ओवरनाइट मैजिक। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बालाजी वेफर्स ने कभी फ्लैशी एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा डिपेंड नहीं किया। प्रोडक्ट ने खुद अपना काम किया, टेस्ट ने मार्केटिंग संभाली। चंदू भाई वीरानी आज भी सिंपल थिंकिंग और लॉन्ग टर्म विजन के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं है बल्कि ट्रस्ट का था। ट्रस्ट ऑन क्वालिटी, ट्रस्ट ऑन कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट ऑन पीपल। और शायद इसीलिए बालाजी वेफर्स सिर्फ मार्केट में नहीं लोगों के रूटीन में भी है। तो क्यों ना अभी एक गाना सुन लिया जाए। गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी बिकॉज दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट वेफर्स, इट्स अबाउट डिसीजन। सो स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।
2: उम्र के साल कितने

0: का।
1: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक छोटा सा पॉज लिया जाए और उनके चाइल्डहुड में डाइव किया जाए। इनका चाइल्डहुड दरअसल फ्लैशी नहीं था, नो बिग ड्रीम्स, नो बिग एक्सपोजर, बस एक सिंपल सा घर और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ में सब कुछ इजिली नहीं मिलता है। स्कूल ज्यादा दूर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, नॉट बिकॉज कैपेसिटी नहीं थी, बट प्रायोरिटीज अलग थी, फैमिली फर्स्ट, सर्वाइवल फर्स्ट। बचपन में ही ये सीख मिल गई थी कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जो जरूरी है वो करना पड़ता है, और शायद यही अर्ली लर्निंग बाद में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि ये स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ और स्केल कहाँ तक पहुँचा। अब सवाल ये है, बीच में ऐसा क्या किया गया जिसने एक स्मॉल सेटअप को एक सॉलिड बिजनेस बना दिया? बिकॉज ऑनेस्टली आइडियाज बहुत लोगों के पास होते हैं, एग्जीक्यूशन सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। बालाजी वेफर्स के केस में सबसे पहला स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये था कि क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे डिमांड कम हो, चाहे मार्जिन थोड़े टाइट हो, टेस्ट और कंसिस्टेंसी कभी नेगोशिएट नहीं करी जाएगी। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज, स्लो बट कंट्रोल ग्रोथ, नो अननेसेसरी एक्सपेंशन, नो चेजिंग ट्रेंड्स, जो प्रोडक्ट चला उसे और बेहतर बनाया जाएगा। कंपनी ने कभी ये नहीं सोचा कि सब कुछ एक साथ करना है, फोकस क्लियर था। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मार्केटिंग नॉइज कम रखा गया, नो फ्लैशी कैंपेन्स, नो ओवर प्रॉमिसिंग एड्स, प्रोडक्ट बोला, कस्टमर ने ट्रस्ट बिल्ड किया और वर्ड ऑफ माउथ ने ब्रांड को ग्रो किया। यह अप्रोच थोड़ी ओल्ड स्कूल लग सकती है बट एक्सट्रीमली पावरफुल है। बालाजी वेफर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी बहुत ग्राउंडेड रहा, लोकल मार्केट्स को पहले स्ट्रॉन्ग किया और फिर आगे बढ़ा। ये स्ट्रेटेजी ये प्रूव करती है कि नेशनल बनने से पहले लोकल होना बहुत जरूरी है बॉस। और एक चीज जो पर्सनली मुझे बहुत स्टैंड आउट लगती है, पीपल मैनेजमेंट। कंपनी सिर्फ मशीन्स और फैक्ट्रीज से नहीं चलती, लोग चलाते हैं। और जब आप हजारों लोगों के साथ काम करते हो तो कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, कल्चर में भी होनी चाहिए। यहीं पे बालाजी वेफर्स एक बिजनेस से ज्यादा एक सिस्टम बन जाता है। नो ड्रामा, जस्ट क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन। और शायद इसी वजह से ये ब्रांड डिकेड्स के बाद भी रेलेवेंट है। तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। आज की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो ना तो वो ये होगी, सक्सेस इज नॉट अबाउट स्टार्टिंग बिग, इट्स अबाउट स्टेइंग कंसिस्टेंस। और आज हमने जिस जर्नी की बात की ना उसमें कोई शॉर्टकट था ना कोई मिरेकल मोमेंट। ये स्टोरी हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सी इंडस्ट्री चूज करें, ये सिखाती है कैसे सोचा जाए, कैसे प्रेशर में भी क्लैरिटी मेंटेन की जाए, कैसे ग्रोथ के चक्कर में कोर को लूज ना किया जाए। एक सिंपल माइंडसेट, अगर प्रोडक्ट जेन्युइन है, अगर इंटेंट क्लियर है तो स्केल टाइम के साथ आता है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपके डिसीजन करते हैं। और आज जब हम बिग नंबर्स, बिग फैक्ट्रीज और बिग ब्रांड्स की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सब एक फेज के बाद आता है। पहले फेज में सिर्फ पेशेंस होता है और प्रोसेस। और बिजनेस अनप्लग्ड का पर्पस भी यही है, सक्सेस को ग्लोरीफाई नहीं करना है, जर्नी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आज की स्टोरी से आप एक चीज ले जा रहे हो तो वो ये हो, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड स्टे ऑनेस्ट टू द प्रोसेस। मैं हूँ आर जगीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। कल फिर मिलेंगे एक और रियल स्टोरी के साथ, एक और ग्राउंडेड जर्नी के साथ। टिल देन कीप बिल्डिंग, कीप बिलीविंग और कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सिनेमाज़ पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदारा है, ओ करम खुदारा है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है।

सेहत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुआ है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जन

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ, रात बाकी बात बाकी।

उम्र है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ शोर नहीं होता पर आवाज होती है, जहाँ लोग तो कम बोलते हैं पर पहाड़ ज्यादा कहते हैं। आज की कहानी आपको लेकर आई है अरुणाचल प्रदेश। आज की कहानी आपको लेकर जा रही है जीरो वैली 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर में जिसकी मंजिल बेहद खूबसूरत है। वो कहा है कि कुछ जगहें शोर से नहीं पहचानी जाती, वहां खामोशी ही नाम होता है। सोचो एक ऐसी वैली जो दिखावे के लिए सुंदर नहीं पर धीरे धीरे दिल में उतर जाए। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ जीरो वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये वैली सी लेवल से लगभग 1500 मीटर ऊपर है। और इतना ही नहीं, ये जगह यूनेस्को की टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। वो कहा है कि जीरो को समझने के लिए यहाँ रुकना पड़ता है, सिर्फ देखना काफी नहीं। और कहा जाता है कि जीरो वैली को और भी ज्यादा खास बनाते हैं अपाताई ट्राइब। वो कहा है कि जीरो वैली सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं, ये लोगों की कहानी है। शहर बनते हैं अक्सर इमारतों से और गांव अपनी पहचान से। जीरो वैली में आपको देखने को मिलेंगे अपातानी ट्राइब, जो नेचर के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। कहा जाता है कि इनकी खेती का तरीका बहुत अलग है। पानी, फिश और फसल एक साथ चलती है। और इतना ही नहीं, एक और खासियत है इन लोगों की, यहाँ डेवलपमेंट का मतलब नेचर को जीतना नहीं समझना होता है। इसीलिए इनकी फार्मिंग का तरीका भी बहुत यूनिक है, फार्मिंग विदाउट डैमेज। इस बारे में भी बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

89.6 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। कल्चर कारवा का आज का सफर हमें ले आया है अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली, जहाँ अभी हमने बात की अपातानी ट्राइब के बारे में, जाना उनकी जिंदगी जीने का तरीका। वहीं आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इनके फार्मिंग का तरीका, जो कि कहा जाता है कि बेहद यूनिक है, फार्मिंग विदाउट डैमेज। आज जब दुनिया ऑर्गेनिक का टैग ढूंढ रही है, वहीं जीरो उसे जी रहा है। कहा जाता है कि अपातानी फार्मिंग सिस्टम बिना फर्टिलाइजर्स, बिना मशीन्स के चलती है। यही रीजन है कि जीरो को वर्ल्ड का बेस्ट सस्टेनेबल मॉडल्स में माना जाता है। वो कहा है कि जो जमीन का ख्याल रखे, जमीन उसे कभी भूखा नहीं रखती। फार्मिंग का तरीका तो पता लगा कि कितना यूनिक है। एक और चीज है जो इस वैली को और भी ज्यादा खास बनाती है, वो है जीरो वैली में म्यूजिक फेस्टिवल। अब जरा सोच कर देखिएगा, इतनी शांति के बीच जब म्यूजिक बजता होगा तो कैसा लगता होगा। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल यानी इंडिया का एक यूनिक आउटडोर इंडी फेस्टिवल। ये इतना ज्यादा यूनिक है कि यहाँ लाउड म्यूजिक नहीं, सिर्फ नेचुरल ऑक्यूस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो कहा है कि यहाँ गाने भी पहाड़ों से पूछ कर बजते हैं। अब बात कर ही रहे हैं जीरो वैली की, तो मौसम को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। आगे जानेंगे कि आखिर जीरो वैली का मौसम कैसा है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से, वो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर, आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बात कर रही थी जीरो वैली के मौसम के बारे में, तो कहा जाता है कि यहाँ का मौसम ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। सुबह धुंध होती है, शाम को हल्की ठंड होती है, रात गहरी शांति होती है। वो कहा है कि कुछ जगह वक्त से तेज नहीं चलती, वहां वक्त रुककर सांस लेता है। तो कुछ ऐसी है अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली। और जीरो वैली के बारे में एक खास बात कही जाती है कि अक्सर जीरो वैली आपको बदल देता है। तो आइए जानें कि क्यों जीरो आपको बदल देता है। कहा है कि लोग जीरो घूमने जाते हैं पर वापस थोड़े बदले हुए आते हैं। ये वैली, ये जगह आपको धीमा कर देता है, शायद इसीलिए इसका नाम जीरो रखा गया। यहाँ सिग्नल कम पर कनेक्शन स्ट्रांग होता है। वो कहा है कि जहाँ नेटवर्क नहीं होता वहाँ दिल कनेक्ट होता है। कुछ ऐसा ही है जीरो वैली। अक्सर यहाँ लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन आते वक्त जीरो को अपने साथ ले आते हैं। जीरो की यादें, जीरो का एहसास, जीरो का मौसम, जीरो की याद, सब कुछ अपने साथ लिए अपने शहर वापस आ जाते हैं। और इसीलिए ये सारी चीजें इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। और भी क्या कुछ खास है इससे जुड़े हुए ट्रिविया के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
0: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

जीरो की अपनी एक अहमियत होती है, जहाँ भी लग जाए बात कुछ और ही हो जाती है। इसीलिए शायद इस जीरो वैली को लोगों से इतना प्यार मिला। कहा जाता है कि एक छोटी सी बात जो जीरो को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है, यूनेस्को बायोस्फीयर रीजन के पास है। यहाँ की बायोडायवर्सिटी अरुणाचल की जान है। वो कहा है कि जीरो वैली कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो शोर कम करता है और खुद से मिलवाता है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी कभी तेज लगने लगे ना, तो जीरो वैली याद कर लेना। कल्चर कारवा का आज का सफर आपको लेकर आया एक ऐसी वैली की तरफ जिसका नाम ही जीरो था, यानी कि जहां रफ्तार की जरूरत ही नहीं, जहां लोग खुद से मिलने आते हैं, पहाड़ों से बात करते हैं और नेचर को जानते हैं, जहां का म्यूजिक, खाना और लोग सभी बेहद प्यारे हैं। कल्चर कारवा का आज का सफर फिलहाल यहीं खत्म होता है। कल फिर से मिलेंगे एक नए जायके के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? नहीं, मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट टाइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर सेफ्टी सबसे ऊपर।
2: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ओ सनम।
1: हर गाने के पीछे एक कहानी छुपी होती है, कभी हंसी कभी यादों की निशानी होती है। जो हम सुनते हैं वो सिर्फ धुन होती है, क्योंकि असली कहानी तो उसके पीछे लिखी होती है। हेलो हाय, मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ, और आप सुन रहे हो म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो, जहाँ हम सिर्फ गाने नहीं सुनते बल्कि उनके पीछे छुपी हुई कहानियों को भी फील करते हैं। और आज का एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन फिल्मों की जहाँ हर गाने के पीछे एक छोटी सी डिटेल है, जो अगर आप नोटिस करो तो पूरी फिल्म और ज्यादा स्पेशल लगने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं दबंग मूवी से।
2: प्यार से दे रहे रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं।
3: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
1: अगर हम इस मूवी की बात करें तो सबसे पहले याद आता है चुलबुल पांडे का स्वैग, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये स्वैग बस रैंडमली क्रिएट नहीं हुआ था, बल्कि ये काफी हद तक इंस्पायर्ड था शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल से। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन मैं आप सभी को बता देती हूँ, वो ये है कि अगर हम फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा, जिनका रोल हम सबको इतना पसंद आया, वो एक्चुअली उनकी डेब्यूट फिल्म थी। कोई कह सकता है कि वो उनकी डेब्यूट फिल्म थी? मैं तो नहीं मानती। मतलब एक तरफ फादर का स्टाइल इंस्पिरेशन बन रहा है, और दूसरी तरफ बेटी अपनी पहली फिल्म से ही इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। और अब कास्टिंग की इतनी बात चल ही रही है, तो एक और डिटेल जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि डिंपल कपाड़िया ने सलमान और अरबाज की माँ का रोल प्ले किया, जबकि रियल लाइफ में इनका एज डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सलमान और अरबाज दोनों से ही डिंपल कपाड़िया छोटी हैं। लेकिन इन्होंने इतना बाखूबी अपना रोल प्ले किया कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये उनसे छोटी हैं। और अब अगर हम गाने की तरफ आएं तो हम सभी ने ये गाना तो सुना ही है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये गाना तो हम सभी अभी भी सुनते हैं, तेरे मस्त मस्त दोने। तो इस गाने में अगर आप सभी ने ध्यान से देखा हो तो बैकग्राउंड में चांदनी का पोस्टर दिखाया गया है, और उस फिल्म में विनोद खन्ना, जो यहाँ सलमान के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उस मूवी में लीड रोल में थे। मतलब एक ही फिल्म में इंस्पिरेशन, डेब्यूट और ट्रिब्यूट सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। तो चलिए, इस मूवी की इतनी बात हो ही रही है तो सुनाती हूँ आपको इसी मूवी से यही आइकॉनिक ट्रैक, और ब्रेक के बाद बताऊंगी आपको ऐसी फिल्म के बारे में जहाँ जो भी ट्रेनिंग हम सभी ने देखी वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, रियल थी। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आप सभी के साथ। और जैसा कि मैंने आप सभी को हिंट दिया था कि एक ऐसी ट्रेनिंग हम सभी ने स्क्रीन पर देखी जो एक्टिंग नहीं थी, रियलिटी में की गई थी, और वो मूवी है बागी।
1: जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा।
0: और इस मूवी की इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो गुरु स्वामी का कैरेक्टर था वो किसी एक्टर ने नहीं बल्कि रियल लाइफ मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट शिफुजी शौर्य भारद्वाज ने प्ले किया। मतलब जो ट्रेनिंग आप स्क्रीन पे देख रहे थे वो एक्चुअली रियल नॉलेज थी। क्या बात है यार, एक मूवी को रियल टच देना काफी इम्पैक्टफुल बना देता है। और अगर स्टोरी की बात करें तो ये सिर्फ एक ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं था बल्कि तेलुगु फिल्म वर्षम और इंडोनेशियन फिल्म द रेड से इंस्पायर्ड था। एक और छोटी सी डिटेल है जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि फिल्म में जो छोटा सा किड नहीं था, याया बोलता है। जी हाँ, वो भी एक पुरानी फिल्म से इंस्पायर्ड था। और जो कर्मा इंस्टीट्यूट दिखाया गया इस मूवी में वो कोई सेट नहीं, कोची का रियल पैलेस है। मतलब इस फिल्म में हर चीज थोड़ी रियल, थोड़ी इंस्पायर्ड और थोड़ी सिनेमैटिक है। चलिए, इस मूवी की इतनी बात हो ही रही है तो सुनाती हूँ आपको इसी मूवी से वो बारिश वाला गाना। जी हाँ, छम छम छम। और इस गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी कहानी के बारे में जहाँ इमोशंस थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं और एक गाना जो सीधा दिल तक जाता है। कौन सा था ये गाना और कौन सी थी ये कहानी, बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए ये गाना आपके लिए।

0: जॉनी जॉनी
1: यस पापा
0: बाइक चलाना है
1: यस पापा
0: हेलमेट पहनना है
1: ओके पापा
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे
1: नो पापा
0: यू आर वेरी गुड बच्चा हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी

0: ईश्वर।
1: 89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि एक ऐसी कहानी जहाँ इमोशंस थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं और एक गाना जो सीधा दिल तक जाता है, तो इस मूवी का सस्पेंस खत्म करते हैं और बताती हूँ मैं आपको इस मूवी के बारे में। जी हाँ, इस मूवी का नाम है एक विलेन।
2: अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है।
1: और अब अगर हम बात करें एक विलेन मूवी की, तो सबसे पहले याद आता है उसका इमोशनल टोन। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आप सभी को बताऊंगी,

काफी हद तक एक साउथ कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड मानी जाती है और इस फिल्म का एक स्पेशल मोमेंट है और वो स्पेशल मोमेंट है श्रद्धा कपूर के लिए क्योंकि उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यूट दिया इस मूवी में गलियां गाना से। मतलब एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने अपनी गाने में भी आवाज दी और जब आप गाना सुनते हो सब एफर्टलेस लगता है लेकिन उसके पीछे का एफर्ट भी उतना ही रियल है। यानी कि श्रद्धा कपूर को हमने इस मूवी में बाइक पर देखा है और ये बाइक चलाना उन्होंने एक्चुअली में सीखा था। कहते नहीं है इंसान चोट खाते खाते ही सीखता है, इस मूवी में ऐसा ही हुआ था। जब वो बाइक चलाना सीख रही थी तो उन्होंने काफी चोटें खाई लेकिन उन्होंने अपना शूट कंटिन्यू करा। वो कहते हैं ना हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग बात, इस मूवी का टाइटल पहले विलन रखा गया था लेकिन बाद में कॉपीराइट इशू की वजह से उसे चेंज करके एक विलन कर दिया गया। मतलब हर चीज फाइनल वर्जन तक आते आते इवॉल्व होती दिखाई गई है। तो इस मूवी की इतनी बात हो ही रही है तो सुनाती हूँ आपको इसी मूवी से श्रद्धा कपूर की आवाज में उनका गाना गलियां। और इस गाने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जहां सारा फोकस सिर्फ एक्शन पे था। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल।

म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आप सभी के साथ। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैं आप सभी को हिंट देकर गई थी कि अगली मूवी जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका सारा फोकस सिर्फ एक्शन पे था। उस मूवी का नाम है सिंघम। और अगर हम इस मूवी की बात करें सबसे पहले सिंघम का एक्शन ही याद आता है। मतलब क्या मारधाड़ हुई थी इस मूवी में। ये उन फिल्मों में से एक फिल्म है जहां टिपिकल रोमांटिक सॉन्ग्स या डांस नंबर नहीं थे, फोकस सिर्फ स्टोरी और एक्शन पे था। और इस ऑथेंटिसिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिल्म का सपोर्टिंग कास्ट मोस्टली मराठी फिल्म इंडस्ट्री से लिया गया। और साथ ही साथ जो वाटर फाइट हमने देखी थी इस मूवी में वो इतनी टफ कंडीशन में शूट हुई थी कि टेम्परेचर काफी लो था, लेकिन जब स्क्रीन पर ये फाइट हम सभी ने देखी कोई कह ही नहीं सकता कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन आई होगी इसको शूट करते टाइम। और अगर हम कास्टिंग की बात करें तो अनुष्का शेट्टी को लीड रोल ऑफर हुआ था। मतलब फाइनल फिल्म तक पहुंचने के लिए काफी डिसीजंस और चेंजेस होते हुए नजर आए। चलिए इस मूवी की इतनी बात हो ही रही है तो सुनाती हूँ आपको इसी मूवी का पावरफुल टाइटल ट्रैक सिंघम। तो आज हमने सिर्फ गाने नहीं सुने, हमने उनके पीछे की कहानियों को भी समझा। और शायद अब जब आप इन्हें दोबारा सुनोगे तो आपको सिर्फ म्यूजिक नहीं उनका सफर भी याद आएगा। मैं हूं आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो। अगले वीकेंड फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
1: कामयाब हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी। धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
2: अरे आगे भी बोलना।
1: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
5: सुन भाई सुरेंद्र।
6: हाँ भाई सुरेंद्र।
5: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
6: सही कह रहे सुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हट।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: कभी कभी लगता है हम जो बोल नहीं पाते वो सबसे ज्यादा लिखा जाता है, और शायद इसीलिए हर दौर की अपनी एक शायरी होती है. एक दौर था जब प्रेमचंद जैसे लेखक समाज को अपनी कहानियां सुना रहे थे. फिर एक ऐसा दौर आया जहां जॉन एलिया जैसे शायरों ने सच्चाई को बिना किसी पर्दे के लिख दिया, और आज वही शायरी रील्स, ओपन माइक्स और स्टेज पर जिंदा है. तो सवाल सिंपल है, क्या बदला है, सिर्फ तरीका या एहसास भी? हे, आप सुन रहे हैं आज दिल शायराना. मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट गीत, और बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि फिर से मेरे साथ यहाँ पर कवि और कवित्रियों की महफिल लग चुकी है जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे. तो वक्त को जाया ना करते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी.
5: थैंक यू सो मच.
4: जी जी, ईशा जी आपका स्वागत है, ज्योति जी आपका स्वागत है, अभिनव जी आपका स्वागत है, ज्योति जी आपका स्वागत है. तो सबसे पहला जो सवाल है वो सभी से है, जो भी पहले जवाब देना चाहे वो आ सकता है माइक के आगे. मेरा सवाल यही है कि आप लिखते क्यों हैं, और अगर शायरी नहीं होती तो आप अपने इमोशंस को कहाँ रखते?
5: बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी बात ये है
4: जी
5: कि जो भी हमारे अंदर चल रहा है, जो भी हम सोचते हैं, वो हम एक पन्ने पर उकेर देते हैं.
4: जी
5: देते हैं.
4: जी,
5: और ये एहसास बहुत खास होता है. कभी हम रोते हैं वो लिखते हुए, कभी हम हंसते हैं, कभी गुदगुदाते हैं.
4: जी,
5: तो इस एहसास को वैसे तो एक्सप्लेन करना, हिंदी में कहेंगे व्याख्या करना, बहुत ही मुश्किल है. लेकिन जब आपने पूछा है तो फिर एहसास की बात ऐसी है कि जो भी मन में आया, जो भी दिल ने कहा, वो सब लिख दिया. चाहे वो अपने इष्ट के लिए हो, चाहे वो अपने प्रेमी के लिए हो, चाहे वो समाज को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो.
4: जी,
5: और कहें कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो ये नहीं होता तो शायद हम कभी नहीं होते.
4: क्या खूबसूरत जवाब दिया है आपने, सीरियसली.
5: तो हम लिखते हैं इसलिए हम कवि हैं, हम शायरा हैं.
4: जी,
5: और बस इतना ही कहूंगी, लिखना जिंदगी है और लिखते ही रहेंगे और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी.
4: क्या बात है, बहुत खूबसूरत. ज्योति जी आपसे भी ये सवाल है, अगर पोइट्री नहीं होती तो ये इमोशन कहाँ जाते?
6: सबसे पहले मैं अपनी लिखी दो लाइनें.
4: बिल्कुल बिल्कुल.
6: कोई बात जब जबान से कहीं नहीं जाती, और कोई पीर जो हृदय से सही नहीं जाती, तो अपने लफ्जों से उन्हें कागज पर उकेर लेती हूँ, और सुनने वाले कहते हैं क्या खूब कविता कहते.
4: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत.
6: तो बस यही है कि जब मन में कोई भाव भर आता है और आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होकर भी कहते हैं कि बाहर आप लोगों को कुछ कहने जाएंगे तो आपकी बात का तमाशा बनाया जाएगा, तो उसको जब हम अपनी कविता में ढाल लेते हैं, हमें जो कुछ भी कहना है उसको अपने भाव को कविता के रूप में निकाल देते हैं
4: जी,
6: तो वो एक अलग ही रचना बन जाती है,
4: और वाह वाह भी मिल जाती है.
6: हमने अपना दुख कह भी दिया और किसी को पता भी नहीं चला.
4: बिल्कुल बिल्कुल.
6: तो इस तरह से, और अगर कविता ना होती, अगर शायरी ना होती, तो बहुत सारे अनसुलझे सवालों का जवाब नहीं मिल पाता, लोगों के दिल तक दिल की बात नहीं पहुंच पाती, और हो सकता है

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अभिनव जी आपके पास आते हैं, सवाल यही है आपसे।
1: देखिए मैं इसको अपने एक अलग जाविये से देखता हूँ। जैसे फूल है तो फूल की जो खुशबू है वो फूल की खुशबू फूल पे रहती तो है, बट अगर वो बाहर अगर आए ना तो फूल की कितनी सार्थकता, वो फूल भले जाने लोग ना जाने, है ना। तो जो हमारे इमोशंस हैं, चाहे वो प्रेम में हो चाहे वो दुख तकलीफ की बात हो
0: जी,
1: ठीक है, उसको सबसे जो क्लोज, सबसे जो नजदीक पहुंचने तक का जो जरिया है वो पोएट्री है, वो गजल है
0: जी।
1: और इससे करने से, लिखने से हमें ये लगता है कि हम जिंदा हैं
0: जी,
1: जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए। बिकॉज ऐसा लगता है कि अगर जो पानी है, पानी भी अगर अपने रवानी पे ना हो तो वो भी सड़ जाता है
0: जी।
1: तो इंसान अगर जो भी अपने जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो अगर पन्न पर उकेरे ना जाए तो उसकी सार्थकता उतनी नहीं रह जाएगी जहां होनी चाहिए
0: जी।
1: और अगर मैं गजल नहीं कहता, मैं शायरी नहीं करता, तो मैं क्या होता, मैं दो मिसरे पढ़ता हूँ
0: जी।
1: एक मतलब और एक शेर इस पे है कि वहां आ जाएंगे लेकिन वहीं के ना रहेंगे हम, जमी के ना रहे फिर तो कहीं के ना रहेंगे हम।
0: क्या बात है।
1: और ये शेर कोट कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको एक वजह मिलेगी
0: जी
1: कि मैं क्यों शायरी करता हूँ। कि अलम आंसू अजियत इसलिए भी पाल रखे हैं, अलम आंसू अजियत इसलिए भी पाल रखे हैं, अगर इसके नहीं फिर शायरी के ना रहेंगे।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आपकी इस शेर ने सब सारी बात कह दी है, पूरी बात का निचोड़ बता दिया है। ज्योति जी आपके पास आते हैं, आपसे भी ये सवाल पूछूंगी, अगर पोइट्री नहीं होती तो आप अपने इमोशंस को कहाँ रखती?
2: मेरे लिए एक शायरी एक थेरेपी की तरह है, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनका इलाज कुछ दिख रहा होता है, लेकिन मेडिकल में हर चीज का इलाज तो नहीं है। तो उसके लिए मैंने काउंसलिंग का अलग से किया कि लोगों को, शायद दुखी जो लोग हैं, डिप्रेस लोग हैं, उनके मैं किसी तरह से हेल्प कर पाऊँ। लेकिन जो समाज है, मैंने देखा कि जल्दी से काउंसलर के पास जाना या ये कहना कि हमें दिक्कत है वो मुश्किल होता है, लेकिन शायरी एक ऐसा फील्ड है कि हर कोई अपनी बात लिख भी देता है और वो एक थेरेपी की तरह है मेरे लिए। तो ये थेरेपी ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को दे रही हूँ, अगर शायरी हम समाज के मुद्दों पर लिख रहे हैं या दूसरा किसी से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को वो थेरेपी दी भी जा रही है, क्योंकि उससे कोई ना कोई मोटिवेट हो रहा है, किसी ना किसी का डिप्रेशन कम हो रहा है, किसी को हम अचानक खुश कर रहे हैं, वही है
0: जी। क्या बढ़िया।

0: आपके क्वेश्चन से मुझे एक और बात याद आई है ज्योति जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी। आजकल कविताओं को, शायरी जो है वो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत पे लिख रहे हैं, लेकिन एक जमाना हुआ करता था जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी जैसे जो कवि रहे हैं समाज को आईना दिखाते थे। तो आपको क्या लगता है आज के वक्त में कविताओं में कितनी रियल सोसाइटी दिख रही है, क्या महसूस करती हैं आप इस बात से?
1: सब लोगों के लिखने का ना एक अपना ढंग होता है
0: जी,
1: और सब के शब्दों का जो जाल वो बुनते हैं वो उनके मन के भावों को उजागर करते हैं
0: जी।
1: मेरा ये मानना है कि जब हम एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, स्पेशली एक लेखक जो है
0: जी,
1: वो समाज को उसका आईना दिखाने का काम तो करता है, लेकिन उसको उसकी कॉपी नहीं बनना
0: जी,
1: उसको समाज को एक बेहतर भविष्य की तरफ, एक बेहतर वर्तमान की तरफ लेकर जाना, ये हमारा फर्ज बन जाता है। और प्यार के ऊपर तो बहुत सदियों से लिखा आ रहा है
0: जी,
1: बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ये बात और है कि मैं नहीं लिख पाई ज्यादा उसके ऊपर
0: जी,
1: मैं भावों की कवित्री हूँ,
0: तो
1: मैं कुछ ना कुछ भाव के ऊपर लिखती हूँ, जिसमें संभव पता नहीं मेरी जिंदगी के जो नौ रस हैं उनमें मैं श्रृंगार के ऊपर ज्यादा नहीं लिख पाई।
0: ओके,
1: तो इसके लिए मैं कई बार कहती भी हूँ, एक गुरुदत्त जी का गाना है कि हम कमजदा हैं लाए कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम
0: जी।
1: तो प्यार पर लिखना मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन ये जरूर है कि हमारा फर्ज है, जब हमने कलम हाथ में उठाई, हम कलम के सिपाही बने हैं, तो हमें सही और गलत इसके बीच में डिफरेंशिएट करके और हर उस टॉपिक पर लिखना चाहिए जो समाज को एक सही राह की तरफ लेकर के
0: जी और कुछ बदला जा सके
1: जी। बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। अभिनव जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आजकल शायरी बहुत ज्यादा विजिबल हो गई है, रील्स, ओपन माइक्स, तो आपको क्या लगता है, क्या फील करते हैं आप कि आजकल लोग फील कम और परफॉर्म ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा फील होता है आपको?
2: देखिए, अभी आज के जो दौर में एक्चुअली जो शायरी है वो शायरी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि शायरी नहीं हो रही है, हो रही है शायरी
0: जी,
2: बट आम तौर पे चूंकि जो दौर जो चल रहा है लोगों में ना वो जो शॉर्टकट मेथड को अपना, कि हम मतलब किस तरह से शॉर्टकट वे से कितने जल्दी लोग मतलब फेमस होना, फेम पाना चाहते हैं, तो उस कारण से जो वो उसका जो रंग है वो शायरी पे भी आपको महफिलों में भी दिखेगा, और उससे प्रभावित है काफी शायर, मैं नाम नहीं लूंगा बट काफी शायरी प्रभावित है उससे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब आप शायरी करते हैं, जब आप पोएट्री करते हैं, तो आप एक जिम्मेदार, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं
0: जी।
2: तो समाज में जो गलतियां हो रही हैं, समाज में जो सुधार होना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कलम को उस तरफ मोड़ें
0: जी,
2: और लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों को इंस्पायर करें
0: जी,
2: ये जरूरी है। और लेकिन जो अधिकांश भाग है इसमें भी, उसमें थोड़ा नुमाइश वाली बात है, इससे मैं बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता
0: जी, फील कम किया जा रहा है जी।

0: कृष्णा जी आपके पास आते हैं, जॉनी लिया साहब के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है लोग बहुत ज्यादा जानते भी नहीं होंगे, इनफैक्ट उनके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन कुछ एक आध दो उनके शेर पढ़ लिए हैं और उनको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं जॉनी लिया साहब के बारे में बात करूं तो बहुत ऑनेस्ट लिखते थे जॉनी लिया साहब, तो आज के टाइम में क्या उतनी ऑनेस्टी जो है वो पॉसिबल है या फिल्टर आ गए हैं अब पोएट्री में?
1: बात करें तो जहां तक है कि जो शायरी हुई कविताएं हुई, देखो लिखी तो दिल से जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल AI भी आ गया है तो उसका भी बहुत उपयोग हो रहा है। लेकिन जो मैंने अभी तक महसूस किया है, AI वो काम नहीं कर सकता जो दिल करता है।
0: जी जी,
1: है ना, वो भावनाएं नहीं इकट्ठी कर सकता। कई बार मैंने भी कोशिश की कि शायद मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन वो भावनाएं, अब मैं जैसे कि ब्रज भाषा का बहुत उपयोग करती हूँ,
0: जी जी जी,
1: तो वो तो कैच ही नहीं कर सकता। हाँ। उसको पता ही नहीं है कि ब्रज क्या है,
0: जी,
1: राधा रानी क्या है,
0: जी,
1: वो ज्यादा से ज्यादा जो थोड़ा बहुत राधा रानी का कृष्ण से कनेक्ट करके वो बोल देंगे, लेकिन वो चीज नहीं बोल पाएंगे जो मुझे चाहिए,
0: जी,
1: क्योंकि वो सिर्फ मेरी भावनाएं हैं, वो मेरे आंखों में आया हुआ पानी है जिसको मैं स्याही की तरह उपयोग करके एक बहुत खूबसूरत सा भजन लिख सकती हूँ, गीत लिख सकती हूँ,
0: जी,
1: कविता लिख सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सनली मेरे अपने विचार है कि जो AI है वो कुछ नया ऐसा कर दे। होते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि अब हम वो पकड़ लेते हैं कि ये बनावटी है। भावनाएं भावना होती है, क्योंकि AI भी तो वही रिपीट करता है जो किसी ने लिखा हुआ है,
0: जी,
1: फिर वो अपना ही क्या जो खुद से ना लिखा गया,
0: जी,
1: तो अपना तो वही है जो खुद से लिखा जाए, जो मन के भाव से आए, जो एकदम तारों को झंकृत कर दे, जो लोगों के दिलों तक सीधी पहुंच जाए, तो वो बात मुझे लगता है कि वो बनावटी चीजों से तो नहीं आ सकती। और जो लोग करते हैं बनावटी चीजें, देखो वो पता लग जाता है, बहुत क्लियर पता लगता है, और जो दिल से है वो दिल तक सीधे पहुंचता है।
0: क्या बात है। ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगी, आप ओपन माइक भी करती हैं, तो ये पर्सनल सवाल है मेरा आपसे, क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक की तालियां या अकेले कमरे में बैठी हुई एक सच्ची लाइन?
2: ओपन माइक की तालियां।
0: बट क्यों?
2: एक्चुअली अकेले कमरे में जो हम लिखते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि हमारा लिखा हुआ एक मतलब जो शायरी है हमारे लिए अपनी औलाद की तरह होती है कि हर को अपना बच्चा अच्छा लगता है, वैसे ही सबको अपना लिखा हुआ अच्छा लगता है, तो वो हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन वहाँ जो सामने ऑडियंस का रिस्पॉन्स होता है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस हिसाब से लिख रहे हैं, आपको कितने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसमें से ही कोई ना कोई उस्ताद बैठा होगा तो आपको वो चीजें भी बताएगा, तो आगे बढ़ने के हिसाब से मुझे वो अच्छा लगता है।
0: जी, तो ऐसी कौन सी आपकी रचना थी जिस पर आपको बहुत ज्यादा तालियां मिली हो, वो आज आप हमारे लिसनर्स के सामने यहाँ पर रख सकती हैं?
2: जी बिल्कुल, मैं मतलब रियल लाइफ पर ज्यादा लिखती हूँ और खासकर लड़कियों पर, तो एक ये मैंने रचना लिखी थी किसी लड़के के ऊपर कि लड़कियों की क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो काफी उन्हें कनेक्ट किया और काफी अच्छी वो गई कि हुस्न की तारीफ करके पहले बहलाया गया, फिर मोहब्बत का यकीन भी हमको दिलवाया गया, और जिसकी खातिर छोड़ दी हमने सभी आसाइशें, उस मोहब्बत के लिए फिर रोज तरसाया गया।
0: क्या बात है।
2: आधुनिक कपड़ों की पहले की गई फरमाइशें, फिर हमें पर्दे में रहना खूब सिखलाया गया, रूह तो जख्मी पड़ी है सुन के उसकी गालियां, जेवरों से यार केवल जिस्म चमकाया गया।
0: क्या बात है।
2: मार भी फटकार भी देखो मिली बेइज्जती, चुटकी भर सिंदूर से क्या क्या ही करवाया गया, किस तरह अपनों से कहते जुल्म की ये दास्तां, अर्थी उठने पर ही आना ये ही समझाया गया।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
2: मान कर जिसको खुदा कर ली इबादत उम्र भर, एक उसी दर से फकत ज्योति को ठुकराया गया।
0: क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो अब तो मैं भी मान गई हूँ इस बात को, ओपन माइक की तालियां।

0: जी अभिनव जी आपके पास आते हैं. पहले लिटरेचर जो था बहुत ही स्लो प्रोसेस था, किताबें इंतजार समझ कुछ ऐसी बातें हुआ करती थी. आजकल 30 सेकंड की शायरी में सब कुछ सिमट जाता है. तो क्या आपको लगता है ये जो स्पीड है ये लिटरेचर को कितना आगे ले जा रही है या कितना पीछे ले जा रही है?
1: ये एक्चुअली मैं कोट करना चाहूंगा कैफी आजमी साहब का एक शेर है कि इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद. इंसान मतलब यहाँ तक है कि मरने के बाद भी, वहाँ शायर का एक्चुअली वो कहने का मतलब मकसद ये है कि इंसान की जो तलब है वो इतनी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मतलब मरने के बाद भी जो है कफन से वो मुतमईन नहीं होता, कफन से वो संतुष्ट नहीं होता, उसे जमी भी चाहिए. तो शायरी जो आज हो रही है, दरअसल हम जो फेम पाने के या जो हम एक फ्रेज कहते हैं ना कि बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ छूटना, बस समझिए वो हो रहा है कि बहुत कुछ ये फेम पाने के चक्कर में हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं. एक्चुअली हम जब पोइट्री लिटरेचर से जब हम जुड़ते हैं
0: जी.
1: तो जुड़कर केवल तालियां बटोरना और जो भी परोस देना ये पोइट्री है नहीं. आपको अगर पोइट्री जीना है तो लिटरेचर को के नजदीक जाना होगा और लिटरेचर को अपना महबूब बनाना होगा. तब जो है तब उस पे वो रंग चढ़ेगा और वो जब रंग चढ़ेगा तो फिर वही है कि फिर वो छूटेगा नहीं, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया.
0: जी कैफी आजमी साहब के बारे में तो आपने बात कर ली है, उनका शेर आपने सुना दिया है. आपकी कोई रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स के सामने रखना चाहते हो तो वो जरूर मैं आपसे पूछूंगी.
1: जी मैं एक गजल, अभी काफी लोगों ने सराहा है
0: जी,
1: तो वो गजल उसका कुछ उसका मतलब और चंद अशआर मैं रखता हूँ. देखिए कि मतलब है कि बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, वरना ये जख्म तो भर जाते हैं, भर जाएंगे.
0: क्या बात है,
1: हमको खा जाएगी तन्हाई ये धीरे धीरे, आप मजबूत हैं इस गम से उबर जाएंगे. पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, घर से बेघर हुए ये लोग किधर जाएंगे.
0: क्या बात है,
1: और इसका ये जो शेर बड़ा वायरल हुआ था कि हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, आप क्या सोचते हैं आपसे डर जाएंगे.
0: क्या बात है,
1: शहर आए थे यही सोच के जब आए थे. हम लोग सब गांव से एक ख्वाब लेकर आते हैं शहर, उसके बाद दिक्कतें ये होती है कि हम फिर शहर के हो जाते हैं, चाहे वो मजबूरी हो या फिर और.
0: जी
1: उस पर मैंने शेर कहा था कि शहर आए थे यही सोच के जब आए थे, हम अगर नाम कमा लेंगे तो घर जाएंगे.
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत.
1: इस गजल का जो मेरा पसंदीदा शेर है वो ये है कि इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, और जिंदा रहे ये लोग तो मर जाएंगे.
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत.

0: ज्योति जी आपके पास हम आते हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ बहुत पर्सनल कुछ लिखा हो और जब शेयर करने की बारी आई हो तो रुक गए हो? बेसिकली मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या अपने पास रखना है बचाकर और क्या दुनिया तक पहुँचाना है।
1: ये पर्सनल चॉइस के ऊपर साथ साथ, जैसा कि अभी हमने बात की सामाजिक जिम्मेदारी, जैसे जब मेरे बच्चे टीनेज में थे तो उस वक्त मैंने उनको बहुत कुछ समझाया दुनियादारी के बारे में कि ये सही है ये गलत है।
0: जी जी।
1: उसके बाद जब वो घर से निकले हैं और उनके सामने जमीन पर कूड़े का ढेर पड़ा है
0: जी,
1: तो अब ये उनको डिसाइड करना है कि उसके साइड से निकल कर जाना है या उसमें पैर मारते हुए जाना
0: जी।
1: तो इसी तरह जब लिख रहे होते हैं हम लोग, कई बार भाव भावातिरेक हो जाता है, आप कुछ अपने मन के बहुत दुखी या कुछ इस तरह की चीजें आप लिख जाते हैं या कुछ कड़वा भी लिख जाते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण का आवेग होता है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अब वो ऑप्शन भी आ गया कि आप डिलीट कर सकते हैं या आप एडिट कर सकते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो टचवुड आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ऐसा पोस्ट किया
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं शायद मैं अपने दिमाग की ज्यादा सुन लेती हूँ पोस्ट करते हुए।
0: जी, क्या
1: लिखते
0: बात,
1: लिखते हुए दिल की सुनते
0: तो जो लिखते हुए दिल की सुनी है आपने, तो आज भी हम आपके दिल की सुनना चाहेंगे कोई आपकी रचना जो आज पहुँचाना चाहे हमारे लिसनर्स तक।
1: बहुत कुछ है, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मेरी माँ का अचानक चले जाना था
0: जी।
1: तो उन्हीं को समर्पित एक छोटी सी रचना
0: जी।
1: स्वागत है। कि हर बात की शिकायत लेकर दौड़ कर आती थी तुम्हारे पास, हर बात की शिकायत लेकर दौड़ कर आती थी तुम्हारे पास, और मेरी हर उलझन का जवाब हंस कर दे देती थी तुम। तुम्हारे होते जाना ही नहीं क्या है दुनियादारी, तुम्हारे होते जाना ही नहीं क्या है दुनियादारी, कैसे निभाने हैं रिश्ते और किस तरह बांधना है मन को। बस बच्चों की तरह लिपट जाती थी तुमसे लड़कर, तुम्हारी ही शिकायत करती थी तुमसे, और तुम मुस्कुराकर रख देती थी हाथ अपना मेरे सर पे। उस छांव में बच्ची ही बनी रही और एक दिन अचानक तुम कर गई बड़ा मुझको। यूं चल दी मुंह मोड़कर और ये भी ना सोचा कि किसको सुनाऊंगी अब मन अपना, कौन सुलझाएगा मेरे मन की गांठें और किसके आंचल में मिलेगी छांव मुझे। बस चली गई तुम मेरा बचपन लेकर और मैं बड़ी हो गई।
0: क्या बात है,
1: बहुत सुंदर। बेटी से अचानक बस माँ बनकर रह गई और देखो माँ आज मैं 15 साल के हो गई।
0: क्या बात, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत हार्ट टचिंग है जो आपने अपनी मदर के लिए लिखा है और आज हमारे लिसनर्स तक पहुँचा।

0: जी अभिनव जी आपके पास आते हैं। पहले लिटरेचर जो था बहुत ही स्लो प्रोसेस था, किताबें इंतजार समझ कुछ ऐसी बातें हुआ करती थी। आजकल 30 सेकंड की शायरी में सब कुछ सिमट जाता है, तो क्या आपको लगता है ये जो स्पीड है ये लिटरेचर को कितना आगे ले जा रही है या कितना पीछे ले जा रही है?
1: ये एक्चुअली मैं कोट करना चाहूंगा कैफी आजमी साहब का एक शेर है कि इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद। इंसान मतलब यहाँ तक है कि मरने के बाद भी, वहां शायर का एक्चुअली वो कहने का मतलब मकसद ये है कि इंसान की जो तलब है वो इतनी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मतलब मरने के बाद भी जो है कफन से वो मुतमईन नहीं होता, कफन से वो संतुष्ट नहीं होता, उसे जमी भी चाहिए
0: जी।
1: तो शायरी जो आज हो रही है, दरअसल हम जो फेम पाने के, या जो हम एक फ्रेज कहते हैं ना कि बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ छूटना, बस समझिए वो हो रहा है कि बहुत कुछ ये फेम पाने के चक्कर में हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। एक्चुअली हम जब पोएट्री लिटरेचर से जब हम जुड़ते हैं
0: जी।
1: तो जुड़कर केवल तालियां बटोरना और जो भी परोस देना, ये पोएट्री है नहीं। आपको अगर पोएट्री जीना है तो लिटरेचर को के नजदीक जाना होगा और लिटरेचर को अपना महबूब बनाना होगा, तब जो है तब उस पे वो रंग चढ़ेगा। और वो जब रंग चढ़ेगा तो फिर वही है कि फिर वो छूटेगा नहीं, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया।
0: जी कैफी आजमी साहब के बारे में तो आपने बात कर ली है, उनका शेर आपने सुना दिया है। आपकी कोई रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स के सामने रखना चाहते हो तो वो जरूर मैं आपसे पूछूंगी।
1: जी मैं एक गजल, अभी काफी लोगों ने सराहा है
0: जी,
1: तो वो गजल उसका कुछ उसका मतलब और चंद अशआर मैं रखता हूँ। देखिए कि मतलब है कि बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, बस यही दुख है कि वो जी से उतर जाएंगे, वरना ये जख्म तो भर जाते हैं, भर जाएंगे।
0: क्या बात है,
1: हमको खा जाएगी तन्हाई ये धीरे धीरे, आप मजबूत हैं इस गम से उबर जाएंगे। पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, पेड़ के काटने वालों ने ये सोचा ही नहीं, घर से बेघर हुए ये लोग किधर जाएंगे।
0: क्या बात है,
1: और इसका ये जो शेर बड़ा वायरल हुआ था कि हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, हम कोई तिफल नहीं आप कोई तोप नहीं, आप क्या सोचते हैं आपसे डर जाएंगे।
0: क्या बात है,
1: शहर आए थे यही सोच के जब आए थे, हम लोग सब गांव से एक ख्वाब लेकर आते हैं शहर, उसके बाद दिक्कतें ये होती है कि हम फिर शहर के हो जाते हैं, चाहे वो मजबूरी हो या फिर और।
0: जी
1: उस पर मैंने शेर कहा था कि शहर आए थे यही सोच के जब आए थे, हम अगर नाम कमा लेंगे तो घर जाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: इस गजल का जो मेरा पसंदीदा शेर है वो ये है कि इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, इनको मर जाने दो ये लोग अभी जिंदा हैं, और जिंदा रहे ये लोग तो मर जाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत।

0: ईशा जी आपसे एक सवाल है। सवाल ये है, आजकल शायरी और कंटेंट के बीच की जो लाइन है वो एकदम ब्लर हो गई है। हर जो शायरी होती है वो वायरल हो ही जाती है, बिकॉज जैसे पहले भी बात हुई है कि फेम के चक्कर में भी बहुत लोग लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आजकल बहुत सारा कंटेंट जो है वो सिर्फ एल्गोरिदम के लिए लिखा जा रहा है?
1: देखिए, इसमें सबके अपने अपने विचार होते होंगे, वैसे मोस्टली यही सुनने में आता है। लेकिन अगर मेरी बात करें तो मेरे साथ में थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि एल्गोरिदम को ठीक करो, ये है वो है, व्हाटएवर, लेकिन मैं टिकी रही कि नहीं, जो मेरा मन कर रहा है, जो मेरे मन में चल रहा है, जो मेरे जीवन में चल रहा है, मैं अपने हिसाब से करूंगी, मुझे एल्गोरिदम की जरूरत नहीं है। और टचवुड, मेरे काफी अच्छे फॉलोवर्स भी हैं, अगर आप चेक करेंगे।
0: क्या बात है।
1: और मुझे नहीं लगता कि एल्गोरिदम से, देखो बहुत ही ज्यादा अगर आप बिल्कुल ऐसे चलें कि तरीके से चलें तो वही वाली बात है कि वो भी फेमस हो रहे हैं और हम भी फेमस हो रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं थोड़ा कम ट्रस्ट करती हूँ इस चीज पे, और मुझे मेरे जैसे रहना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, तो शायद मैं काफी रूल्स को पीछे भी छोड़ देती हूँ। और मेरा मैसेज सीधा सीधा लोगों को यही जाता है कि जो आपका मन करे ना वो करें। और अगर टेक्निकली आप बात कर रहे हो तो ये चीज भी बहुत सारी जगह पे होती है, और एक कहते हैं ना कि कमाई का एक जरिया भी है उन लोगों के लिए, तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो ये एल्गोरिदम का जो शोर है ये बस मचाया जा रहा है। फेमस होना भी थोड़ा सा, देखो लक की भी बात होती है और आपके अंदर क्या टैलेंट है उसकी भी बात होती है। और हालांकि देखने में ये भी मिलता है कि कोई कुछ भी कर रहा है और वो फेमस हुए जा रहा है, बट वो भी तो देखिए ना, अचानक से ही हुआ है, उन्होंने कौन सा एल्गोरिदम का फॉलो किया होगा। तो ऐसा तो मैं नहीं सोचती पर्सनली, ये मेरे अपने विचार है।
0: कोई आपकी रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें, और आपने खुद भी बताया कि आप ब्रिज भाषा में लिखती हैं, तो उसमें भी तो हम जरूर सुनेंगे आपसे।
1: बिल्कुल, देखिए मैं बरसाने की बहू के नाम से जानी जाती
0: हूं। अरे वाह,
1: अब नए इस मंच पे आई हूँ तो मैं अपना परिचय इसी तरह से देना चाहूंगी कि

0: तो ये तो मेरा कहते हैं ब्रज वाला मैंने आपको बताया
1: जी।
0: और इसके अलावा देखिए अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने आपको बताया मैं एल्गोरिदम का यूज नहीं करती मैं अपनी शर्तों पे चलती हूँ। तो वहीं से मैंने कुछ लिखा है कि धीरे धीरे सही

के हुए, ये जरूरी नहीं मुझको चाहे सभी, ये जरूरी नहीं मुझको चाहे।

कहूँ इश्क खुद से करो कि मैं हूँ ईशा कहूँ इश्क खुद से करो इश्क की।

0: सही अपने मन की हुई।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और जो आपने गाया है वो बहुत कमाल है, सीरियसली। आप पे जाते हैं, मुझे लगता है टैगलाइन मैं अपनी फेवरेट हूँ।
0: अरे आपको ये बड़ी अच्छी आपने बात बोली
1: जी,
0: ये मैं हमेशा से ही बोलती आ रही हूँ। और जब वो मूवी आई थी जब भी में करीना कपूर, और जब उन्होंने ये यूज किया, आप बिलीव नहीं करेंगे उसका यूज मैंने कहाँ किया। उसका यूज मैंने फिलहाल व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो थर्ड एपिसोड है अक्षय कुमार के साथ,
1: तो
0: करीना कपूर की मैंने अक्षय कुमार से शिकायत की है। मेरी जो ये फेवरेट लाइन है वो करीना जी ने चुराया है, तो कृपया करके आप उनसे बोले कि मेरी लाइन का जो आपने उपयोग किया है उसका कुछ मुझे मिल जाए। तो व्हील ऑफ अक्षय कुमार के साथ
1: जी जी।
0: जो मेरा,
1: अरे वाह,
0: मैंने इसका उपयोग,
1: क्या बात है।
0: तो ये बिल्कुल सही है, ये मेरी ही टैगलाइन है।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।

0: अब हम क्लोजिंग पर आ चुके हैं अपने प्रोग्राम की, क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जाते जाते एक सवाल फिर सबसे है, ये सवाल, अगर आपको एक लाइन में बताना हो आपके लिए पोएट्री क्या है तो वो क्या होगा, और इसी के साथ साथ आपकी कोई एक और खूबसूरत रचना जो हम फिर से सुनेंगे, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएंगे। ज्योति जी, आपसे हम
1: शायरी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया तो मैं थेरेपी अभी भी यही बोल रही हूँ, शायरी मेरे लिए थेरेपी।
0: जी जी जी।
1: यूं कदमों में अपने झुकाना है मुश्किल, इशारों पे मुझको नचाना है मुश्किल, तुम्हें मेरे रास्ते से हटना पड़ेगा, मुझे रास्ते से हटाना है मुश्किल, बनानी पड़ेगी मुझे फिल्म पूरी, गजल में तो सब कुछ बताना है मुश्किल, मोहब्बत से बेशक हरा दो मुझे तुम, अना से तो मुझको हराना है मुश्किल।
0: बहुत बढ़िया।
1: मयस्सर है दौलत से सब कुछ जहां में, मगर यार ज्योति को पाना है मुश्किल। एक शेर और मैं सुनाना,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेरा, मैं सब कहते हैं कि मैं खेलों पर लिखती हूँ लेकिन मैं जिंदगी पर लिखती हूँ, जिंदगी भी खेल से कुछ ज्यादा कम नहीं है। तो ये अच्छा मेरा शेर काफी वायरल हुआ है कि पल में बुलंदी से गिरा डाला मुझे, बर्बादियों ने इस कदर चाहा मुझे, मैं जीतने वाली थी खेले जिंदगी, 99 पे सांप ने काटा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ज्योति जी जब यहाँ पर आई थी तो सबसे पहले आते मुझसे बोला था कि मैं आज पहली बार इंटरव्यू कर रही हूँ तो थोड़ा सा आप मुझे गाइड कीजिएगा, लेकिन वो छुपा रुस्तम जो शब्द सुना है ना, बिल्कुल ठीक बैठता है आप पर, एकदम फिट। अभिनव जी, आपसे भी सवाल यही है, कविता क्या है आपके लिए?
2: अगर मैं जिस्म हूँ तो कविता मेरे लिए सांस है।
0: जी, और कोई आपकी रचना जो फिर से आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें, कोई एक और खूबसूरत रचना?
2: एक गजल।
0: बिल्कुल
2: आपके
0: जी।
2: इस बार जो फल फूल शजर पर नहीं आए, इस वास्ते घर में मेरे पत्थर नहीं आए, जो डूबने उतरे उन्हें दरिया ने उछाला, तैराक थे जो बन रहे बाहर नहीं आए।
0: क्या बात है।
2: आते जो अगर दौड़ में अव्वल ही तो आते, गिरते हुओं को छोड़ के हम पर नहीं आए।
0: क्या बात है।
2: वरना तो उबर ही गए होते तेरे गम से, हम तुझ में मुकम्मल तुझे रख कर नहीं आए।
3: क्या?
2: कुछ देर में बस खेल के आते हैं जरा माँ। ये जो किडनैपिंग बच्चों वाली जो है उस पे एक शेर जैसे हुआ
0: जी।
2: वो देखिए आप। कुछ देर में बस खेल के आते हैं जरा माँ, निकले तो थे बच्चे यही कहकर नहीं आए। और जो आज का दौर है, जो फैशन का दौर चल रहा है, वहाँ बच्चे थोड़ा अपने संस्कार से भी अलग हो रहे हैं
0: जी।
2: उस पे एक शेर आप कनेक्ट कर पाएंगे, देखिए कि निकले हैं फलक छूने को बच्चे तो ये घर से, निकले हैं फलक छूने को बच्चे तो ये घर से, माँ बाप के पर पांव भी छूकर नहीं।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ज्योति जी, आपसे भी सवाल है, पोएट्री क्या है आपके लिए?
3: पोएट्री के लिए मैंने पहले चार लाइनें जो बोली थी उसी को आगे लेकर चलती हूँ कि कविता से मिलती है मेरे मौन को सुबह, और कविता देती है मेरे निस्पंद हृदय को प्राण, और मुझे जीने का एहसास कराती है कविता, मेरे हर पल को खास बनाती है कविता, मेरे शब्द मेरे आंसू मेरी मुस्कान की, बहती है जब भाव सरिता, अब अंतस में कहीं जन्म लेती है कविता।
0: क्या बात है।
3: और जहाँ सांसें बोझिल और पांवों में थकन होती है, वहाँ शब्द करते हैं नर्तन और एक कविता जन्म लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ये तो थी कविता की बात जो आपने कंप्लीट की, लेकिन एक और कोई रचना
3: जी
0: जो आपके दिल के करीब हो वो आप यहाँ?
3: दिल के करीब बहुत है, लेकिन मेरी एक गजल काफी फेमस हुई थी।
0: बिल्कुल,
3: थोड़ा सा उसी
0: जी जी जी।

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: जिंदगानी को कभी मेरी सवारा होता।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।

0: ईशा जी आपके पास आते हैं, आपके लिए कविता क्या है और कोई एक और खूबसूरत आपकी रचना जो आप हमें यहाँ सुनाना चाहते हो?
1: बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला है कि जो मेरी टैगलाइन है मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, मैं ही कविता हूँ। या तो कोई मुझ पे लिख देगा
0: क्या बात है
1: तो बहुत खूबसूरत। मैं तो यही मानती हूँ कि जो मैं हूँ वो ही मैं लिख रही हूँ, या फिर अगर कोई और लिखेगा तो अगर मेरे लिए तो वो भी मेरे लिए कविता है, वही गजल है, वही मेरे लिए शायरी है।
0: जी,
1: तो मैं भी पहले एक सोच रही हूँ कि एक छोटा सा शेर बोल के और फिर उसके बाद मैं अपनी रचना बोलूंगी। आपके बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया तो कि गजल लिखना नहीं आया, गीत लिखना नहीं आया, गजल लिखना नहीं आया, गीत लिखना नहीं आया, मगर जो भी लिखा मैंने वहाँ खुद को बहुत पाया।
0: क्या बात है,
1: मगर जो भी लिखा मैंने वहाँ खुद को
0: बहुत बढ़िया।
1: और आप जैसे कह रही हैं कि अपनी रचना, और आपने जैसे ब्रज की बोला था कि आप सुनोगे, तो मैं आपको वही सुना
0: देती हूं। जी,
1: मेरी राधा रानी के चरणों में समर्पित। और रात के 1:30 बजे ये कविता, ये सवेरा लिखा गया था और मैं फपक फपक के रोई थी। तो राधा रानी के चरणों में समर्पित, और ये भाव आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि

0: आई तुम्हारी शरण में,
1: बहुत खूबसूरत
0: भाग चमकत आई तुम्हारी शरण में,
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया।
2: राधा रानी की जय।
0: थैंक यू।
1: ये जो समा बांधा है आपने बहुत अच्छा लगा, और आप सबसे बातें करके आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा।
3: मैं वही कहना चाह रहा था कि हम सबको भी आपसे बात करके बढ़िया महसूस हुआ, जी शाद हो गया।
0: प्रश्न जो है वो सच में बहुत ही सही प्रश्न थे, जिनके उत्तर बहुत लोग भी जानना चाहते हैं, और आज आपने हमारे अपने अपने विचारों के हिसाब से आपने उनके उत्तर हमसे लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके।
1: थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैंने सबसे ऐसे सवाल किया है कविता क्या है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत लिखती हूँ। मैं अपने आप को ये कहूंगी कि मैं पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है। तो मैंने लिखा था, कह दूं तुझसे सदियों की कहानी या चंद लम्हों का इंतजार लिखूं, ऐ कोरे कागज तू ही बता आज क्या खास लिखा। तो ऐसे ही मैं पन्नों से बात कर लिया करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें लिसनर्स तक पहुँचाई। कहते हैं कि वक्त बदलता है, प्लेटफॉर्म बदलते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वो हमेशा कनेक्ट करता है। आप सुन रहे थे आज दिल शायराना, मैं आपकी होस्ट गीत आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, और अब आपसे इजाजत चाहूंगी। आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM को, छटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। देखो, देखो।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

भटकता हुआ सा एक बादल हूँ जो आके तेरे आसमां पे ठहरा है। वैसे लिखने वाले क्या क्या सोच लेते हैं और कहाँ तक लिख लेते हैं। जिंदगी का फलसफा भी तो कुछ ऐसा ही कहता है ना, कि हम भटकते हुए ना जाने किस आसमान पे जाकर बैठ जाते हैं और ढूंढने पर भी कई बार मिलते नहीं हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। सपना हूँ मैं आपके साथ और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे आज जिस स्टार की मैं बात कर रही हूँ वो ऐसा ही भटकता हुआ एक बादल था जो या तो गलती से या फिर अपनी डेस्टिनी के चलते पहुंच गया था हिंदी सिनेमा की ओर। अमृतसर में पैदा हुई ये कुड़ी पंजाबी पहुंच गई अमेरिका अपनी हायर स्टडीज के लिए। पिताजी तो हमेशा से ही चाहते थे कि ये पेंटर बने, क्योंकि शी वॉज अ सुपर पेंटर एंड अ फोटोग्राफर। तो पापा चाहते थे कि क्यों ना पेंटिंग में ये लड़की आगे बढ़े, लेकिन उनका आसमान तो कहीं और था और इस सितारे को उसी आसमान में जो चमकना था, इसलिए आ गई ये हिंदी सिनेमा की ओर। और यहाँ आकर इन्हें पहला ब्रेक भी दिया तो किसने, कपूर खानदान के चश्मो चिराग यानी कि शशि कपूर साहब ने। यहाँ से शुरुआत हुई इनकी फिल्मी करियर की और देखते ही देखते ये बुलंदियों पर पहुंच गई। लेकिन कुछ लोगों को इनका इंडस्ट्री में आना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमेशा ही ये कंट्रोवर्सी में रही, क्योंकि ये कहा जाता था कि ये आर्ट फिल्म एक्ट्रेस हैं, वेयर एज कमर्शियल्स में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में इन्हें काम करने का मौका मिला। किसकी बात कर रही हूँ बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको सुनाऊंगी एक खूबसूरत सा गीत बिल्कुल मेरी आज की स्टार गेस्ट की तरह। तो एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, वापस जल्द मुलाकात होगी आपसे कहां, अरे यहीं जहां हम सब आकर ठहर जाते हैं।

0: लाइट्स कैमरा एक्शन।
1: ये लाइफ भी कितनी फिल्मी है ना, तारे जमीन पर जैसे स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने का सपना मिस्टर इंडिया हो जाता है। जॉब करो तो रॉकेट सिंह, बिजनेस में बदमाश कंपनी, पार्टनर मिलते ही बैंड बाजा बारात के साथ द एंड सा लगता है। लेकिन
2: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
0: लाइफ में डालने मोर थ्रिल, एक्शन एंड स्पेशल इफेक्ट्स, देयर इज अ बेटर ऑप्शन देन ओटीटी एंड मूवी टिकट्स। सुनो रेडियो महारानी का नया नवेला शो फिल्मी फ्लेवर, जहां लिए जाते हैं सिनेमा के चटकारे बॉलीवुड म्यूजिक का तड़का मार के। विद सिनेमाहोलिक्स आरजे मोने, एवरी मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 से 5, ओनली ऑन 89.6 FM।

0: जॉनी जॉनी,
1: यस पापा।
0: बाइक चलाना है?
1: यस पापा।
0: हेलमेट पहनना है?
1: ओके पापा।
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
1: नो पापा।
0: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

हर तूफान हर बारिश को चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 एफएम की आवाज। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कोच हट।

पैसा ये पैसा हाय पैसा कैसा पैसा, ये हो तो मुसीबत ये ना हो तो मुसीबत। वैसे कभी कभी दिल करता है कि ये कह दूं कि कोई बात नहीं पैसा आप दे दीजिए, मुसीबतों से हम अपने आप ही जूझ लेंगे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। सपना हूँ मैं आपके साथ और ले आए हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि हो रही है बातें ढेर सारी। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो कि बहुत ही खूबसूरत है, एक बहुत ही ग्रेस है उनके चेहरे पर। जितना कुछ वो डिजर्व करती थी इस इंडस्ट्री ने उतना तो नहीं दिया, लेकिन हाँ इन्होंने अपने बलबूते पर एक ऐसा मुकाम इंडस्ट्री में हासिल किया जिसे आज भी लोग याद करते हैं और आज भी बहुत सारी फिल्मों में ये अदाकारा नजर आती हैं। इनका नाम है दीप्ति नवल।

नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 में अमृतसर पंजाब में हुआ। ये इंटेलेक्चुअल तो थी ही, साथ ही इनमें एक छुपा हुआ सा आर्टिस्ट भी था। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि इनके फादर साहब इंग्लिश के प्रोफेसर और इनकी मदर एक आर्टिस्ट थी। इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग तो अमृतसर में ही कंप्लीट की और बाद में क्योंकि इनके फादर साहब का ट्रांसफर हो गया था न्यूयॉर्क, तो ये पूरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई और आगे की पढ़ाई इन्होंने न्यूयॉर्क में ही कंप्लीट की। जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, इनके अंदर का आर्टिस्ट भी जागता रहा और इनकी पेंटिंग में धीरे धीरे करके सुधार होता रहा। तो इनके पेरेंट्स को लगा कि ये लड़की पक्का एक पेंटर बनेगी, क्योंकि मदर भी आर्टिस्ट थी। इस फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, लेकिन ये दिल जो है ना, ये बहुत बेईमान है। इसे जहाँ जाने के लिए कहिए, ये वहाँ कभी नहीं जाता, बल्कि किसी और ही दिशा में उड़ जाता है। दीप्ति का भी हाल कुछ ऐसा सा ही हो रहा था, क्योंकि वो आर्टिस्ट तो बनना चाहती थी लेकिन एक अलग फील्ड में। वो फील्ड हम सब जानते हैं कि वो एक्टिंग का फील्ड था, लेकिन ये एक्टिंग इनके अंदर आई कैसे और क्यों बनना चाहती थी ये एक फिल्म एक्ट्रेस, ये सब मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले बाबू समझो इशारे, दिल ये पुकारे, ये गाना सुना दो ना, एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। तू मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। वैसे जीने को तो बहुत कुछ चाहिए प्यार के अलावा भी, लेकिन फिलहाल हम इसी से काम चला लेते हैं। एंजॉय दिस ट्रैक और वापस आकर ढेर सारी बातें करते रहेंगे।

0: कुछ पुरानी यादें, पुराने किरदार आज के जमाने के लिए यादगार।
1: और शायद जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: जिंदगी कैसी है पहेली।
0: वो एक कल जब बीते थे अपनों के संग कुछ पल।
3: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम।
0: जब इशारों में होती थी बातें, इंतजार में कटती थी रातें।

0: सिनेमा के कुछ यादगार रंग अपनों के संग शो रात बाकी बाद बाकी में सपना के संग
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
0: शनिवार और रविवार रात 8 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कभी फुर्सत मिल जाए तो मुझसे बात करना, जब सबसे दिल भर जाए तब मुझसे बात करना। मैं इश्क में हूँ, मेरा फर्ज बनता है इंतजार करना। तुम पाबंद नहीं, तुम जिससे चाहो उससे मोहब्बत।

रमता जोगी। ताल फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जिसे कंपोज किया था एआर रहमान साहब ने और अपनी आवाज देकर इस गीत को संजोया था सुखविंदर जी ने। वैसे इन दोनों आर्टिस्ट में ना एक कॉमन टैलेंट है, ये किसी भी गाने को अगर छू लें तो वो गाना अमर हो जाता है, लोगों के दिल और दिमाग पर सालों तक उसका इम्प्रेशन रहता है। वैसे इतने सालों बाद जब हम इस गीत को सुन रहे थे तो कहीं ना हम लोग भी झूम ही रहे थे। कमिंग बैक टू आर स्टार दीप्ति नवल जी, जो कि 4 साल की उम्र में ही ये मान कर बैठी थी कि फिल्में तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन दिखाती हैं, यानी कि यहाँ पर मार धाड़ ही होती है, और उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद कभी फिल्म ही नहीं देखूंगी। लेकिन लाइफ ने कुछ ऐसा टर्न किया कि कुछ ही सालों बाद इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं फिल्म एक्ट्रेस ही बनूंगी। तो चलिए पहले इंसिडेंट से शुरू करते हैं। दरअसल ये सिर्फ 4 साल की थी जब अपने पेरेंट्स के साथ एक मूवी देखने गई। फिल्म का नाम था दुर्गेश नंदिनी, जो कि 1956 में रिलीज हुई थी, और इसमें बहुत ज्यादा एक्शन था जिसे देखकर ये 4 साल की बच्ची डर गई और इसने डिसाइड किया कि वो कभी भी फिल्म नहीं देखने जाएंगी। लेकिन इनका परसेप्शन तब चेंज हुआ जब कुछ सालों बाद इनके कजन्स एक मूवी देखकर आए, और क्योंकि ये नहीं जाना चाहती थी इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया। तो फिल्म थी शम्मी कपूर साहब की, बहुत ही मजा आया उन्हें, और देन शी रियलाइज कि इन्होंने कुछ बहुत बड़ा मिस किया है। 1960s में बलराज साहनी साहब आए अमृतसर, उनका एक थिएटर प्ले था जिसका नाम था खनकती बल्ली। इट वॉज अ पंजाबी प्ले, और जब बलराज जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें देखकर ये इतनी खुश हुई, और उनका परसोना, द वे ही वॉज सिटिंग, द वे ही वॉज स्टैंडिंग, और जो उनका अटायर था, ये देखकर ये इतनी इम्प्रेस्ड हुई उनसे कि इन्होंने वहीं डिसाइड कर लिया कि यही परसोना एक दिन मेरा भी होगा। लेकिन उनसे ऑटोग्राफ लेते हुए ये छोटी सी बच्ची इतनी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि कुछ ऐसे शब्द इनके कानों में पड़े जो कि इन्होंने पहले नहीं सुने थे। लेकिन जब इन्होंने उन शब्दों को इतनी बड़ी पर्सनालिटी से सुना तो इनका दिल तो बगीचा बगीचा यानी गार्डन गार्डन हो गया था। एंड देन शी डिसाइडेड कि अब तो 100% ही मैं एक्ट्रेस बनूंगी। कौन से थे ये मैजिकल वर्ड्स, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपको पता है तो आप भी मुझे बता सकते हैं। नंबर है मेरा 9654896896। तुरंत अपना फ़ोन उठाइए और मुझे बताइए अगर आपको पता है कि ये वर्ड्स कौन से थे। तब तक आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही नोटोरियस सा गीत, कह दो तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। नहीं, ये पूरा गाना मैं नहीं गाने वाली हूँ, आप इसे सिंगर की ही आवाज में सुनिए।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
1: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी। धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
2: अरे आगे भी बोलना।
1: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

क्या करें जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। वैसे जब कोई प्यार में होता है तो वो कुछ करने लायक भी नहीं रहता, वो सिर्फ अपने प्यार की तरफ ही तो भागता है, वही करता है जो उसके बिलवट को पसंद होता है। फिलहाल स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रात बाकी बात बाकी में सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ, और आज हम बातें कर रहे हैं दीप्ति नवल जी की, जिन्होंने बहुत छोटी एज में पहले तो ये डिसाइड किया कि वो कभी भी फिल्म्स नहीं देखेगी, लेकिन एक शख्स उनकी लाइफ में ऐसे आए जिन्होंने उनका ये जो परसेप्शन था फिल्म्स की और वो बिल्कुल बदल दिया, एंड नाउ शी डिसाइडेड कि अब तो मैं एक्ट्रेस ही बनने वाली हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बलराज साहनी जी जो कि इनके शहर में आए थे, उन्होंने कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स इन्हें कहे थे जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, वो मैजिकल वर्ड्स क्या थे? बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट आए जिन्होंने मुझे कुछ सही तो कुछ गलत जवाब भी दिए हैं। सरोज कुमार, रितिका और भावेश के जवाब बिल्कुल सही हैं। किसी ने कहा कि उन्होंने कहा थैंक्स डियर, हाउ स्वीट, कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन ऐसे कोई भी शब्द बलराज जी ने अपने मुंह से नहीं निकाले थे, रादर उन्होंने ऑटोग्राफ देते हुए इस बच्ची से कहा माय डियर अगर मैं सबको ऑटोग्राफ देता रहूँगा तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। ये कुछ ऐसे शब्द थे जो कि दीप्ति के कानों में ऐसे गूंजते रहे कितने टाइम तक, और वो अपने आप को एज एन एक्ट्रेस अभी से फील करने लगी थी, देखने लगी थी मिरर में। उन्होंने सोचा कि इतना प्यारा पर्सोना हो जाता है फिल्मों में जाने वाले लोगों का, तो मैं भी एक्ट्रेस ही बनूंगी, और ये सपना उनका पूरा तो हुआ। लेकिन बहुत सालों बाद जब उनकी फिल्म आई जुनून, इट वॉज अ श्याम बेनेगल्स फिल्म, और इसमें दीप्ति का रोल बहुत छोटा येट इम्प्रेसिव था। इसके बाद एक दूसरी फिल्म आई, फिल्म का नाम था एक बार फिर। ये फिल्म बहुत ही मायनों में बहुत इम्पॉर्टेंट थी, स्पेशली दीप्ति के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बोल्ड टॉपिक पर पिक्चराइज्ड फिल्म थी, एंड द टॉपिक वॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उस वक्त इस टॉपिक पर बात करना बहुत ही बड़ा टैबू था और लोग जनरली बात नहीं करना पसंद करते थे, लेकिन इन्होंने कल्पना का रोल अदा किया एंड इट गेव अ न्यू डेफिनेशन टू द वुमेन्स डिजायर। इस फिल्म में इनके को एक्टर सुरेश ओबेरॉय और प्रदीप वर्मा थे, लेकिन ना जाने इस फिल्म में ऐसा क्या हुआ कि दीप्ति ने सुरेश जी से बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। पूरे 4 सालों तक दोनों किसी भी फिल्म में साथ नजर नहीं आए। उसके बाद इन्होंने एक और फिल्म साथ में की जिसका नाम था कानून क्या करेगा। दीप्ति की जर्नी कुछ अजीब सी चल रही थी, जहां एक तरफ ये कमर्शियल फिल्मों की तरफ बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक और पैरेलल सिनेमा भी बढ़ रहा था आगे, जो था एक आर्ट सिनेमा, और इन्होंने इस सिनेमा को डेडिकेट करते हुए बहुत सारी फिल्मों में काम किया। कमला, मैं जिंदा हूँ, पंचवटी, अनकही, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों में इन्होंने काम किया। पर उसके बाद हुआ इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा जिसकी वजह से इन्हें मेंटल असाइलम तक जाना पड़ा। क्या हुआ था इनकी लाइफ में ऐसा, ये सनसनीखेज खुलासा मैं जरूर करूंगी। फिलहाल एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की और हम लोग बढ़ते हैं, वापस आकर बात करेंगे, एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी। जितने भी लोगों ने मुझे सही या गलत जवाब भेजे उन सब का शुक्रिया, और सही जवाब देने वाले सारे लिसनर्स जल्द ही मेरे साथ मेरे शो में भी जुड़ेंगे।

0: मुश्किल में।
1: कुछ पुरानी यादें, पुराने किरदार, आज के जमाने के लिए यादगार।
2: और शायद जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
3: जिंदगी कैसी है पहेली हार।
1: वो एक कल जब बीते थे अपनों के संग कुछ पल।
4: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम।
1: जब इशारों में होती थी बातें, इंतजार में कटती थी।

0: सिनेमा के कुछ यादगार रंग अपनों के संग शो रात बाकी बाद बाकी में सपना के संग
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
0: शनिवार और रविवार रात 8 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन OTP पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

खुद को घर खुली किताब कर दूं, तो मुझे पढ़ लोगे क्या? और घर ना लिखे रब हमारी किस्मत एक साथ, तो उस रब से हमारे लिए लड़ लोगे क्या? अगर मिले

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ छक्के।

स्वागत है जी एक बार फिर से आप सभी का सपनाओं में आपके साथ। और आज रात बाकी बात बाकी में हम दीप्ति नवल जी की बातें कर रहे हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया, लेकिन अब तक इन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे लेवल की फिल्म मुझे नहीं मिल रही। बहुत कुछ था जो इनके अंदर अभी भी स्टोर था और दुनिया से छुपा हुआ था, जिसे ये बाहर निकालना चाहती थी। ऐसी ही इनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था अनकही, जिसमें अपनी स्क्रिप्ट को और ज्यादा डेप्थ में समझने के लिए इन्होंने कुछ दिन मेंटल असाइलम में गुजारे। वहां की दुनिया देखकर ये बहुत ज्यादा हिल गई थी, इसलिए तो 10 साल बाद एक बार फिर से इनके पास एक ऐसी स्क्रिप्ट आई जिसकी वजह से इन्हें मेंटल असाइलम में वक्त गुजारना पड़ा। इस बार इन्होंने कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारा, पूरे 2 हफ्ते ये उसी असाइलम में रहे और वहां पर लोगों की तकलीफ देखकर, दुख देखकर इन्हें आउटर वर्ल्ड अब थोड़ा सा खटकने लगा था। इन्हें ऐसा लगा कि ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यहाँ पर लोग फेक हैं, वो नहीं दिखाते हैं जो असल में वो हैं। लेकिन जैसे ही वो इस असाइलम से बाहर आई तो इन्होंने एक पोएम लिखकर हर किसी को सरप्राइज कर दिया था। पोएम का नाम था द स्टेंच ऑफ सैनिटी। ये पोएम इन्होंने डेडिकेट की थी उन फीमेल्स को जो कि मेंटल असाइलम का पार्ट थी और किसी भी प्रॉब्लम में ना होते हुए भी वो अपनी जिंदगी उस असाइलम में गुजार रही थी। दरअसल जब ये असाइलम के अंदर थी तो इनकी मुलाकात कुछ ऐसी फीमेल से हुई जिन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी, पर उनकी फैमिली ने उन्हें डिसओन कर दिया था क्योंकि वो उनके साथ रहना नहीं चाहती थी और उन्हें असाइलम में भेज दिया था। इन लेडीज का जब इन्होंने दर्द सुना तो इन्हें लगा कि नहीं, दिस रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लिव इन द आउटर वर्ल्ड। शायद यही वो रीजन था कि इन्होंने कमर्शियल फिल्म से ज्यादा आर्ट फिल्म्स में अपनी रुचि दिखाई। यहाँ इन्हें कुछ ऐसे ही लाइक माइंडेड फ्रेंड्स भी मिले जिसमें शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और दीप्ति, ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। वैसे ये भी कहा जाता है कि एक दौर ऐसा आया जब ये स्मिता पाटिल के इतने ज़्यादा क्लोज हो गई थी कि ये उनमें अपने आप को देखने लगी थी और हमेशा ये ट्रिप पर साथ ही जाया करते थे। इनकी लास्ट फ्लाइट स्मिता जी के साथ थी और एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा वो इनके लिए। दीप्ति ने स्मिता से पूछा कि क्या लाइफ जीने का यही एक तरीका है, तो स्मिता ने एक पॉज लेते हुए कहा, हाँ सिर्फ यही तरीका है। और इसके बाद ये मुलाकात यहीं खत्म हुई और दोबारा स्मिता को वो कभी नहीं देख पाई। स्मिता से ये इतनी ज्यादा अटैच्ड थी कि उनके जाने के बाद इनका दुख और इनकी तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। इन्होंने एक पोएम भी स्मिता को डेडिकेट की जिसका नाम था स्मिता एंड आई।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर गुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे। रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
2: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
1: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: बोलने पर होने लगी है परेशानी उनको, जो कल तक कहते थे बोलते बहुत कम हो, रहने लगे हो गुमसुम बताते कुछ नहीं, अब क्या खता हुई आखिर नजरें।

फिल्म शराबी का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जिसे अपनी आवाज दी थी आशा भोसले जी ने। वैसे ये जो फीमेल वर्जन है ना, ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स के साथ ये कहा जाता है कि दे कैन नॉट आस्क फॉर लव, वो प्रपोज नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर जया जी ने और आशा भोसले जी ने बहुत खुल के इजहार किया अपने प्यार का। स्वागत है आप सभी का रात बाकी बात बाकी में, जहां आज हम दीप्ति नवल जी की बातें कर रहे हैं। स्मिता जी के जाने के बाद बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और अपने फिल्मी करियर पर भी थोड़ा सा ध्यान कम हो गया था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त है गुजर ही जाता है, और ऐसा ही वक्त इनकी लाइफ में अब फिर से आने लगा था। खैर, इनकी एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, उसके बारे में अगर आज मैं जिक्र ना करूं तो मेरा शो जो है ना वो अधूरा रह जाएगा। फिल्म का नाम था चश्मे बद्दूर, जिसमें ये फारूक शेख के साथ नजर आई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था साई परांजपे ने। साई एक्चुअली में एक मराठी थिएटर को बिलोंग करती थी और ये उनकी सेकंड डायरेक्टेड फिल्म थी। अपनी पहली फिल्म स्पर्श के लिए ये ऑलरेडी नेशनल अवार्ड ले चुकी थी। इस फिल्म में फारूक शेख के साथ दीप्ति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अक्सर सेट पर इन दोनों को एक दूसरे को टीज करते हुए छेड़ते हुए देखा गया, और लोगों ने, क्योंकि लोगों का काम है कहना, तो लोगों ने कुछ और ही मतलब निकाला उनकी दोस्ती का, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये अपनी दोस्ती को वैसे ही निभाते रहे। चश्मे बद्दूर वॉज अ सुपर हिट फिल्म और उसके बाद दीप्ति एक अलग ही राह पर चल पड़ी थी, क्योंकि बहुत सारी फिल्में इनके पास आ चुकी थी साइन होने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि इसी चश्मे बद्दूर फिल्म का रीमेक पूरे 32 सालों बाद एक बार फिर से बना था, जिसमें दीप्ति को रिप्लेस किया था तापसी पन्नू ने, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे डेविड धवन साहब। बहुत सारे इंटरव्यूज इनके लिए गए, क्योंकि सेम डे जिस दिन रीमेक वर्जन को रिलीज किया जाना था, उसी दिन पुरानी चश्मे बद्दूर को भी री रिलीज किया जा रहा था। तभी ऐसा कुछ हुआ जो कि दीप्ति ने कभी भी नहीं सोचा था। दरअसल इनके ऊपर एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया गया, वो एलिगेशन था सेक्स रैकेट चलाने का। हुआ कुछ ऐसा था कि दीप्ति चश्मे बद्दूर के री रिलीज पर अपने फ्लैट पर एक इंटरव्यू दे रही थी और फारूक शेख भी वहां पर मौजूद थे, और तभी सोसाइटी के लोग वहां आ गए और उन्होंने आकर बहुत हंगामा किया, और ये कहा गया कि सोसाइटी में इंटरव्यू देना या फिर शूटिंग करना अलाउड नहीं है, नॉर्म्स के अगेंस्ट है। दीप्ति पिछले 30 सालों से उसी सोसाइटी में रह रही थी, तो शी वॉज वेरी टच्ड एंड हर्ट। जब उन्होंने प्रेस में अपना बयान दिया तो उनके बयान को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, और कुछ रिपोर्टर्स ने, शरारती रिपोर्टर्स ने रादर कुछ ऐसे आर्टिकल्स छापे जिसने ये बताया कि दीप्ति एक सेक्स रैकेट चला रही है, विच वॉज एक्चुअली नॉट ट्रू, और ये सारे एलिगेशन बाद में गलत भी प्रूव हुए। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से शी वॉज रियली हर्ट एंड टच, और उसके बाद इन्हें बहुत ज्यादा दुख था कि उन्होंने वो इंटरव्यू अपने घर पे क्यों रखा। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है हंसी मजाक एक अलग बात होती है, लेकिन किसी पर सीरियस एलिगेशन लगाना इज नॉट डन। चलिए आपको सुनाती हूँ डॉन फिल्म का एक बहुत ही बेहतरीन गाना, पिया तो अब तो आजा, वापस आकर आपको बताऊंगी उस आइकॉनिक फिल्म के बारे में जिसने दीप्ति नवल को एक बार फिर से मौका दिया था अपना काम दिखाने का। इस फिल्म में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिससे अब तक हम सब अनजान हैं। बताएगा कौन? अरे हम हैं ना, जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: Bonito!
1: वहाँ गया, देखो देखो वहाँ गया।

कुछ अनसुनी कहानियां मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं कहानियां भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है, तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियां जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुंचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जाए। सुन,

पावर ये एक ऐसी फिल्म बनी जिसमें बहुत सालों बाद एक बार फिर से लोगों ने दीप्ति नवल को काम करते हुए देखा। इस फिल्म के कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं जो अब तक लोगों के सामने नहीं आए हैं, एक एक करके आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म इंस्पायर्ड थी एक अमेरिकन ऑथर बेटी महमूदी से, और उनकी स्टोरी पर बेस्ड एक इंग्लिश फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था नॉट विदाउट माई डॉटर। और इसी फिल्म को डायरेक्टर कृष्णा वामसी ने पहले तेलुगु और फिर तमिल लैंग्वेज में बनाया। फाइनली बोनी कपूर और श्रीदेवी ने सोचा कि हम इसी फिल्म को हिंदी में बनाते हैं, जिसका टाइटल डिसाइड हुआ शक्ति द पावर। अब इसकी स्टार कास्ट का सिलेक्शन बहुत अमेजिंग रहा। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की एक्ट्रेस के बारे में, जो कि करिश्मा कपूर ने ओरिजिनली इस फिल्म में काम किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी फिल्म इंडस्ट्री में इसी फिल्म से कमबैक करना चाहती थी, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वो काम नहीं कर पाए। तो इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था काजोल को, जिन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अभी इस पर्टिकुलर रोल के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तब कहीं जाकर करिश्मा कपूर का सिलेक्शन हुआ, एंड व्हाट एन अमेजिंग रोल। इस फिल्म के लिए उनका नॉमिनेशन फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए भी हुआ था, और लोगों ने, यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने भी भर भर के अप्रिसिएशंस दिए थे उन्हें इस रोल के लिए। अब बात करते हैं हमारे मेल स्टार की, जिसमें पहले फरदीन खान का नाम सिलेक्ट हुआ था, बाद में संजय कपूर से उन्हें रिप्लेस किया गया। इस फिल्म में बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स भी दिखाई दिए थे। ऐश्वर्या राय, SRK, प्रभु देवा और गणेश आचार्य ने भी इस फिल्म में काम किए। म्यूजिक बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एक पर्टिकुलर आइटम सॉन्ग जिसमें ऐश्वर्या राय और SRK एक साथ नजर आए थे, उस गाने की वजह से पूरा म्यूजिक जो था वो चल निकला, हिट हो गया। अब बात करते हैं उस रोल की जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, नाना पाटेकर जी का रोल। लेकिन क्या आप जानते हैं तेलुगु फिल्म में इस रोल को प्रकाश राज साहब

साहब को तेलुगु फिल्म में इस रोल को निभाने के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। ऐसे बहुत सारे चटपटे किस्से फिल्मों में होते हैं जो कि हमें पता नहीं होते। और भी बहुत सारे किस्से हैं मेरे पिटारे में, लेकिन वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो चलिए फटाफट मैं आपको सुनाती हूँ कुछ प्यारे से ट्रैक। वापस आकर ऐसे ही कुछ किस्सों से पर्दा उठाओ।

दीप्ति नवल न केवल एक अदाकारा बल्कि एक राइटर और पेंटर भी हैं। इन्होंने कुछ फिल्मों को भी डायरेक्ट किया। 60 से ज्यादा फिल्मों में काम करके इन्होंने बहुत से अवार्ड जीते, जिसमें 2003 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड एट कराची फिल्म फेस्टिवल, 2012 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल स्पेन और द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया था। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि पंजाबी, कन्नड़, उड़िया, बंगाली और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया है। कुछ टीवी सीरियल्स में भी ये बाद में नजर आई, जिसमें सौदा, तनाव, मुकम्मल, ऐसे टीवी सीरियल्स का भी नाम शामिल है। 2023 में मदर टेरेसा एंड मी नाम के लास्ट फिल्मी प्रोजेक्ट में इन्हें देखा गया और लोग तो आज भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं और इन्हें बिग और स्मॉल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। दीप्ति की प्रोफेशनल लाइफ चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में इन्हें प्यार हमेशा दूर ही नजर आया। डायरेक्टर प्रकाश झा से ये शादी के रिश्ते में बंधी हो, पर कुछ सालों बाद इन दोनों ने इस बंधन को बीच में ही तोड़ दिया और बहुत सालों के बाद इन्हें एक बार फिर से अपनी जिंदगी में प्यार दस्तक देते हुए दिखाई दे रहा था। विनोद पंडित जी, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को बिलोंग करते थे, उनके साथ दीप्ति का नाम जोड़ा जा रहा था। इससे पहले कि वो किसी बंधन में बंधते, लंबी बीमारी के चलते विनोद साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और एक बार फिर से दीप्ति रह गई अकेली। हम तो यही दुआ करेंगे कि जितना लोगों ने इनकी फिल्मों को प्यार दिया, उतना ही लोग इन्हें इनकी पर्सनल लाइफ में भी प्यार और दुआएं दें। और दीप्ति जी, अगर आप ये शो सुन रही हैं, तो हम सब यही चाहते हैं कि आप फिल्मों से दूर ना हों, क्योंकि ये हिंदी सिनेमा आपके बगैर अधूरा है। आज का एपिसोड मेरे लिए रहा बहुत खास। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल वक्त हो चला है मेरा आपसे विदा लेने का। फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे कुछ नए स्टार्स के साथ और उनके कुछ ऐसे अनसुने किस्सों के साथ मैं आपको मिलवाऊंगी जो कि आज तक आपसे छुपे हुए थे। तो चलिए, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और हाँ, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।

सच्चे इश्क मोहब्बत और प्यार का एक ही दस्तूर है। जिसने जिसे चाहा वो आज उससे दूर है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने, बाका मा बोले आधी रात।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पेड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है

आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: my god, special offer, get XYZ brand clothes worth rupees 5999 and just rupees 599. Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: से स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

का दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियाने में टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
7: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्जुन नहीं होता, अर्ज अर्ज।
7: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
7: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
7: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
7: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
7: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
7: सुनो सुनो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी, जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना, ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था, अब मैं चली तुम बोलते रहो।
1: सुनो

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं। क्यों फूलों के खिले खिले कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
2: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM
4: कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो, सुनो।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

0: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
2: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

स्ट्रॉज पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी और तुमसे?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है,
1: जी देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े गुमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: है जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: जाता है, ज्ञान भूल जाता है। भक्ति का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जो विलास करत हैं, जिन यह समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे ते आपते जाई अंतर परे निसंदेह। अब यहाँ रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सभी से ये चर्चा करनी उचित नहीं है। देवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे तो आपते जाए, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके हृदय में जो रसानुभूति है वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई इस विषय पर, भजन को छिपाना ही भजन को बचाना है, भजन का गोपन। और अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा वो खींचतान कर सबको लगाने का यहाँ प्रयास करते हैं, पर ऐसा संभव होता नहीं है भाई। जीव का कल्याण केवल केवल केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये आपका मेरा प्रयास नहीं है, ये आप पर और मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के प्रसाद से आप और मैं यहाँ पर बैठे। ताते मौन होए रहनो बहुत भलो है। सब जगह प्रवचन उपदेश की आवश्यकता नहीं है, है ना। दुर्दास जी कह रहे आवश्यकता से भी कम बोलने वाला वस्तुतः साधक है। डोंगरे जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है वो सदा मौन रहता है। समझिए, वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोल कर गंवाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही। विजाति माने जो आपके रस के अनुकूल ना हो। अच्छा, एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा इस वाद और विवाद में भी मत पड़िए। किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पढ़ना भी ठीक नहीं है। जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा।